0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 14 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद विविध भारती से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और उसके तुरंत बाद होगा वंदनवार कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेहे के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्यवेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जाती है। इसके साथ ही ये समाचार

0: बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम इंटरनेट स्ट्रीमिंग और डीटीएच पर सुन सकते हैं, और इसके अलावा एक मोबाइल एप्लीकेशन है न्यूज ऑन एआईआर, जिसके जरिए आप हमारे कार्यक्रमों का आनंद दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय ले सकते हैं। ये है विविध भारती।

चिंतन। बालगंगाधर तिलक का कथन है, आपका लक्ष्य किसी जादू से पूरा नहीं होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना होगा। भक्ति संगीत।

सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। दिन के कोरे पन्ने पर छा जाते हैं कुछ गाने, बनकर आपके मीठे

0: हर रोज सुबह 7:30 बजे हम हैं राही प्यार के,
1: हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ न बोली,
0: उंगली पकड़ कर चलती है आपके साथ हर सुबह आपकी अपनी विविध भारती की आवाज। सुबह 8:30 पर चित्रलोक, जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है क्योंकि विविध भारती आपका हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमें अपने आप से आ गई।
2: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून 4:00 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

संघ है। जरूखा लिखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का। अब से कुछ देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का अनाज भाग 217। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, गज तत्ववाद्य। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक। ये कार्यक्रम आप शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 7 बजे भोले बिस्तरे की गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8 बजे समाचार प्रभात। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष। आज 32वीं कड़ी, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक सुनिएगा, 9:30 पर आज के फन

रात 9:30 पर भी सुन सकते हैं। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश, 11 बजे सुनिएगा रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे हेलो सहेली, 4 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, अंजलि की कहानी सुनिएगा, अंजलि लेखक है अरगवान अब्बे, छाया गीत शाम 5 बजे, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन सुनिएगा, शाम 7 बजे जयबाला, 7:45 पर गुलदस्ता।

रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटिका सफेदी के पेड़। लेखक रेवती सरन शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें कि सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रलोक।

10 बजे छाया गीत होगा, 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जायरा, रात्रि 11 बजे सुनिएगा रंग का रंग। ये था लेखा जोखा आज दिन भर के कार्यक्रमों का।

फिल्म संसार के जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फिल्मकार हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।

श्री राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्रीराम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं, अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए जानिए आज और कल हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। पहले बात आज के प्रसारणों की। आज 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग, जो हरियाणवी गीतों पर आधारित है। सुबह 7:40 का समय रहेगा सुप्रभात का। 8:00 सुनेगा समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार होंगे। 8:30 से आप विविध भारती के प्रसारण सुन सकते हैं।

10 बजे सुनेगा कार्यक्रम नमस्ते हिसार, 11 बजे एक बार फिर विविध भारती के प्रसारण आप सुनेंगे, 12 बजे सुनेगा यादों की महफिल, 1:05 पर हिंदी प्रादेशिक समाचार होंगे।

2 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार, 2:15 पर हिंदी समाचार होंगे, 3 बजे सुनेगा सखी सहेली, 4 बजे गीतों भरी कहानी विविध भारती से आप सुन सकेंगे। आज शाम 5 बजे प्रसारित होगा आपका अपना फोन इन कार्यक्रम हेलो हिसार, 6 बजे हिंदी समाचार होंगे।

6:05 पर कार्यक्रम रूपरेखा आप सुन सकेंगे। प्रादेशिक समाचारों का वक्त होगा 6:10। भक्ति संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 6:20 पर। 6:30 प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का अगला भाग। 7:00 होगा कार्यक्रम खेती किसाना सेती और 7:30 सुनिएगा महारे गांव।

आज रात 8 बजे कार्यक्रम होगा पंजाबी लोकगीत। 8:30 बजे खुला आकाश में सुनेगा एक फिल्म से। 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचार होंगे। 9 से 10 बजे आप आनंद ले सकेंगे विविध भारती के प्रसारणों का। रात्रि 10 बजे सुनेगा संदेश आपके गीत हमारे, ये कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित होगा। सभा के अंत में रात 11 बजे सुनेगा हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

कल की सभा का आगाज होगा 5:55 से। 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर वंदन वार कार्यक्रम सुनेगा। कार्यक्रम रूपरेखा 6:45 पर आप सुनेंगे। संस्कृत समाचार 6:55 पर, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कार्यक्रम लोकरंग आप सुन सकेंगे 7:10 पर और सुप्रभात का समय रहेगा 7:40।

8 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात होगा। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे 8:30 बजे। नौ से 10 बजे आनंद लीजिएगा विविध भारती के प्रसारणों का। नमस्ते हिसार, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे कल सुबह भी 10 बजे। 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग होगा। 12 बजे पल पल दिल के पास। 1:05 पर प्रादेशिक समाचार होंगे और 1:10 पर कुछ बातें कुछ गीत।

दो बजे अंग्रेजी समाचार होंगे, 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे, 2:30 विविध भारती के प्रसारण आप सुनेंगे, जिसमें 3 बजे सुनिएगा सखी सहेली, 4 बजे आज के मेहमान, 5 बजे हम लेकर आएंगे आपके लिए व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, 6 बजे समाचार होंगे, 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे, भक्ति संगीत का समय होगा 6:20, युवा उमंग ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 6:30 कल, 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम और 7:30 हमारे गांव कार्यक्रम आप सुनिएगा, रात्रि 8 बजे कल सुनिएगा शहर की गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम परिक्रमा, 8:30 एक फिल्म से कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे।

0: समाचार संध्या 8:45 पर होगा। 9:00 अंग्रेजी में समाचार, 9:15 पे सुनेंगे आप विविध भारती के प्रसारण, 10:00 सुनेगा हेलो हिसार का पुनर्प्रसारण और सभा के अंत में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं।
1: हीर को कबूतर से खत भिजवाया। राजे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे राजे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने राजे को समझाया,
2: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
3: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
2: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
3: हर मंगलवार शाम 5:00
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है,
4: चकरका चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
3: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
5: Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Where are you going? Flying so high. Over the mountain, over the sea. Aeroplane, aeroplane, please take me.
2: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
3: हर रविवार सुबह 10:30 पर
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। हिंदुस्तान जमीन है सितारों की,
6: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
3: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की,
2: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है,
7: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता,
3: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है,
8: विल बी रिमेम्बर्ड एज अ ग्रेट साइंटिस्ट सेड ला थॉमस अल्वा एडिसन,
2: कोई कला में उत्कृष्ट है,
3: तो कोई संगीत का शिरोमणि,
2: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए आपके घर में आपके बे। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर अब से थोड़ी ही देर बाद सुनिए संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और उसके तुरंत बाद होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: च एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-उत्तरैकशततम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑल सीड्स किसान मित्र नामी व्हाट्सएप आधारित एआई परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृहणन् विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः चिंतां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितमस्ति, यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानंदः तरुण मेन्नीपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
2: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही है। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित एआई सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तेलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। यह टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi yesterday, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategy around it. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the 2 northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart, Nephew Ryu. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence.

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोकरंग के साथ। आज की हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम की कलाकार हैं अनीता वर्मा व सखियां।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हरियाणवी लोक रंग आकाशवाणी के इशार केंद्र से। ये कार्यक्रम हर रोज सुबह 7:10 से 7:40 तक प्रसारित किया जाए।

ये सुना भाइयों, आज आपने हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के अंतर्गत अनीता वर्मा व सखियों की आवाज में गाए गीत। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकरंग FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी हिसार 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त और इस कार्यक्रम का होस्ट कुमार रोहित आपके मनपसंद कार्यक्रम सुप्रभात में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पक्षियों की चहचहाहट ने, पत्तों की सरसराहट ने, किरणों की आहट ने उम्मीदों का द्वार खोला है। नए दिन की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज 12 जून 2026 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और भरणी नक्षत्र शोभन योग तथा कोलवकरण है। आज सूर्योदय प्रातः 5:23 पर हुआ है तथा सूर्यास्त 7:19 पर होगा।

मौसम की बात की जाए तो आज मौसम खुशनुमा हो गया है। कल की बूंदाबांदी ने तापमान कम कर दिया है। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहेगा। आज का विचार, दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। और वास्तव में ये बात सच है दोस्तों, कि जो व्यक्ति सपना देखता है वो कभी सो नहीं पाता। अपने सपने के पीछे पीछे वो भागता रहता है, उसको पूरा करने का अनथक प्रयास करता है। और ये भी एक सपना ही था आप सबसे मुखातिब होने का, आप सबसे बात करने का, जो मेरा आज पूरा हो रहा है।

सुप्रभात। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुमार रोहित। दोस्तों, अब गीता के कुछ श्लोकों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि गीता हमारी धार्मिक पुस्तकों में से एक है। पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा

संगो अस्तु कर्मणि। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, कि तुम्हारा जो अधिकार है वो सिर्फ कर्म करने में है, तुम फल की चिंता मत करो, यानी कि कर्म का जो परिणाम होगा उसको मत देखो। और ऐसा भी नहीं है कि तुम कर्म करना छोड़ दो, क्योंकि वास्तव में अगर कुछ तुम्हें प्राप्त होना है, इस जीवन में कुछ पाना है, तो वो कर्म ही है जो आपको वो दिलवाएगा। तुम्हारी संगति कर्म में अवश्य होनी चाहिए, बिना कर्म के हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। ये श्लोक द्वितीय अध्याय का 47वां श्लोक है। और दूसरा श्लोक है, कर्मण्येव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादय, कर्मण्येव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादय, लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तु मर्हसि। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि भाई, ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, जनक इत्यादि जो भी लोग प्रसिद्ध हुए हैं, वो कैसे प्रसिद्ध हो गए? कर्म से ही। काम कीजिए, क्योंकि काम करना ही सच्चाई है। और लोक संग्रह को देखते हुए, लोक कल्याण को देखते हुए आपको कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म किए आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करो, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। परिणाम क्या होगा इसके बारे में सोचना, चिंता करना व्यर्थ है। ये श्लोक जो है तृतीय अध्याय का 20वां श्लोक है। तीसरा श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग दिवस भी आ रहा है, और योग के बारे में क्या बताते हैं श्री कृष्ण, क्या कहते हैं अर्जुन को कि योग क्या है? योग वास्तव में है जोड़ करना, मिलाना, कि और तुम योगी हो जाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगी बनकर कार्यों को करो, और जो तुम्हारी लालसा है, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, उसमें जो तुम्हारी आसक्ति है, उनको हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम छोड़ दो, उनका त्याग कर दो। सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, सफलता और असफलता में तुम समान बनो, सफलता से ज्यादा अर्श पर मत जाओ, और असफलता को फर्श पर मत समझो, असफलता से दुखी मत हो, क्योंकि सफलता और असफलता को जब समान समझोगे, इसी को वास्तव में हम योग कह सकते हैं, इसी को योग कहा जा सकता है। तो मित्रों, वास्तव में बात ये भी सच है कि यदि हम सफलता और असफलता से ना घबराएं, दिन प्रतिदिन अपना कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें, तभी हमें जो है सफलता मिलेगी। और वास्तविक जिंदगी में सफलता और असली योग यही है कि कर्म करें, और उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसकी चिंता हम ना करें।

अब प्रेरक प्रसंग, प्रेरक प्रसंग वो होते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन को सफल बनाते हैं, हमारे जीवन को एक रोशनी दिखाते हैं, और ये करते हैं कि भाई कहीं भी तिमिर है, कहीं भी तिरगी है, तो उन प्रेरक प्रसंगों के सहारे हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब जब भी हम ये पाते हैं, अपने आप को पीछे पाते हैं, कोई बूस्टअप नहीं मिलता, कुछ ऐसा आश्रय नहीं मिलता कि हम आगे बढ़ें, तो ऐसे ही हजारों प्रसंग ऐसे हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं और आगे ले जाते हैं। तो मुझे याद आ रहा है एक प्रेरक प्रसंग ऐसा ही, स्वामी दयानंद जी को कौन नहीं जानता, और जब स्वामी दयानंद जी स्वामी दयानंद नहीं हुए थे तब वो खोज रहे थे, सत्य की खोज कर रहे थे, तो वो जाते जाते एक बार किसी सन्यासी के पास चले गए। सन्यासी का नाम उन्होंने बहुत सुना था, सन्यासी से मिलने दूर दूर से लोग आ रहे थे, ऐसे सन्यासी जिनका नाम विरजानंद था और जो आंखों से अंधे थे, जो देख नहीं पाते थे, लेकिन उनकी जो ज्ञान प्रज्ञा

चक्षु थे ना, उनसे वो सारी दुनिया को न केवल देखते थे बल्कि समझाते थे। तो ऐसे ही दयानंद जी ने सुना कि भी कोई स्वामी हैं और जो सबके जो प्रश्न हैं उनका निवारण करते हैं, जो शंकाएं हैं उनको मिटाते हैं, उनको समाप्त करते हैं। तो स्वामी दयानंद भी चले गए विरजानंद के पास, और जाते जाते जाते ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, विरजानंद जी बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, कि भी कौन है। स्वामी विरजानंद जी ने पूछा कि कौन है, तो स्वामी दयानंद ने जवाब दिया कि यही तो मैं जानने आया हूं कि वास्तव में कौन हूं, मैं क्या हूं और मेरा जन्म किस कारण से किस लिए हुआ है। तो वास्तव में दोस्तों, सच बात तो यही है कि आइए कि हम अपने आप को खोजें, अपने आप को तलाशें कि हम कौन हैं। जो अपने आप की जो खोज है, स्वयं की जो तलाश है, वो सबसे निराली है। क्योंकि व्यक्ति ये सोचता रहता है जिंदगी की आपाधापी में, जिंदगी के जो संघर्ष हैं उसमें अपने आप को भूल जाता है, अपने आप पर वो वक्त दे ही नहीं पाता, अपने बारे में वो सोच ही नहीं पाता कि मैं क्या हूं। इतना पैसा, इतनी डिग्रियां, न जाने हम किस लिए कमा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ उस दुनिया के लिए तो नहीं है जो हमारा जन्म हुआ है। इस दुनिया में हम आए हैं तो किस लिए आए हैं। आइए अपने आप की तलाश करें, खोज लें अपने आप को, जान लें अपने आप को। और ये कैसे होगा, ये उस यात्रा से तो नहीं संभव जो यात्रा हम बाहर की यात्रा कर रहे हैं, जो हम बाहर की दुनिया में दौड़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो कैसे खोजेंगे। एक दोस्तों, अंदर की यात्रा भी होती है, स्वयं की अंदर जाना पड़ेगा, स्वयं के अंदर झांकना पड़ेगा कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और प्रयास करना पड़ेगा। वो कहा भी गया है ना कि क्यों डरें जिंदगी से क्या होगा, क्यों डरें जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजर्बा होगा। और हंसती हुई आंखों में झांक कर देखो, हंसती हुई आंखों में झांक कर देखो, कोई आंसू कहीं छिपा होगा, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा। तो दोस्तों, वास्तव में जिंदगी यही है कि अपने आप को हम तलाश कर लें, अपने आप को जान लें। इसके अनेक माध्यम हो सकते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन से कर इसको पा सकते हैं, कुछ लोग अपना अपना संघर्ष कर सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी यात्रा है, अपनी अपनी खोज है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी हिसार से। अगला कार्यक्रम समाचारों का सुप्रभात, जिसे हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। समाचार प्रभात, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा। आइए हम सब कार्यक्रम की प्रतीक्षा करते हैं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
3: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक

0: एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं, परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में, हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
0: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
3: We signed this year a free trade agreement with Europe.
4: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग, खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
5: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर

0: शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उपमंत्री जमित रवान कोलितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
1: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
0: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं।

0: युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमेरिका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पश्चिम पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना, हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: बारह साल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और

0: प्रसाद बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दासगुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
1: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
0: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहू लुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्र पाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक दम बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा।
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वहीं के वहीं अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जनसमुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई बी सेफ हियर विथ यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
4: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया, अधिक विरोध से

0: स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
1: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
3: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितू प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमें अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। पहले यादों की वादियों में संग संग दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग, ऐसे गाने जो चुरा ले आपका दिल, दिन में 12 बजे यादों की महफिल,
1: तेरा मुझसे है पहले नाता,
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर। घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30 तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

शुरुआत करते हैं कैसल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव के लिखे इस गाने से। फिल्म का नाम है मेट्रो इन दिनों। अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाजें प्रीतम की तर्ज है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है।
1: हम सफर मेरे हम सफर।
0: पहले यादों की वादियों में संग संग दिन में 11 बजे सुनते हुए रंग तरंग, ऐसे गाने जो चुरा ले आपका दिल। दिन में 12 बजे यादों की महफिल,
2: तेरा मुझसे है पहले नाता।
0: दिन में 1 बजे एक अनूठी इबारत की डगर, सुरीला सफर।
2: तुम आ गए।
0: घड़ी की सुइयां जब बजाती है 2:30, तो बजती है सदाबहार नगमों की शहनाई। जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि हर रोज विविध भारती आपका हम सफर है। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, आपका जीवन संगीत।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

ऐश्वर्य खुराना की आवाज थी। अंतिम का नाम था विकी डोना।

0: फिल्म संसार की जानी मानी कलाकारों पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फिल्मकार हर रोज सुबह 9:30 और रात 9:30 पर सिर्फ विविध भारती पर।
1: विशाल मिश्रा की आवाज में ये

जब शोर भरी दुनिया भी विविध भारती हो आपके संग, तो मिलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं

संस्कृति से चित्रलोक, अलगयाग्निक और शान की आवाजें, उनका नाम बस इतना सा खाब है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष
2: यह है विविध भारती
3: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार हैं गुजरे जमाने की जानी मानी ऐसी अदाकारा जो है बला की खूबसूरत, जिनके चेहरे पर है नूर।

0: अभिनेत्री श्यामा लाहौर में एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। उनके माता पिता ने उनका नाम खुर्शीद अख्तर रखा था। फिल्मों में आने के बाद उनका नाम श्यामा पड़ा।
1: एक दिन मैं गई प्रकाश पिक्चर
0: जी,
1: प्रकाश पिक्चर वालों ने मुझे बुलाया और उसमें कहा नई माँ एक पिक्चर थी, उसमें रोल था छोटी लड़की का
0: जी।
1: तो मुझे बीजू भाई ने कहा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने कहा खुर्शीद अख्तर। तो कहने लगे खुर्शीद तो गाने वाली है, और फिर हमारे पास एक दूसरी भी है खुर्शीद, वो है खुर्शीद जूनियर, और ये तुम सीनियर कहाँ से आ गई
0: जी।
1: तो मैंने कहा तो फिर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं। मैंने कहा जैसे आप कहें। तो उन्होंने मुझे मेरा नाम श्यामा दिया।
0: अच्छा, उस समय
1: और मुझे वो नाम इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लोगों को अभी तक याद है कि श्यामा कौन है
0: जी। बिल्कुल।

तो 9 साल की नन्ही खुर्शीद ने पहली बार फिल्म जीनत की कव्वाली में बतौर सिंगर काम किया। उन दिनों नूरजहां की किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और खुर्शीद अख्तर यानी श्यामा अपनी सहेलियों के साथ पहुंच गई दादर के स्टूडियो में शूटिंग देखने। तभी इस फिल्म के निर्देशक और नूरजहां के पति शौकत हुसैन ने पूछा कि तुम में से कोई लड़की इस फिल्म में काम करोगी। इस पर श्यामा ने तुरंत कहा, हाँ मैं करूँगी। बस इस तरह श्यामा का फिल्मी पर्दे की शुरुआत हो गई। हालांकि श्यामा के माता पिता हरगिज नहीं चाहते थे कि वे फिल्मों में काम करें, लेकिन श्यामा के जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ा।

गाने में सिचुएशन ये है कि कार में गुरुदत्त और श्यामा हैं और रूठे हुए गुरुदत्त को श्यामा मना रही हैं। उन्होंने आंखों और चेहरे के भावों से ऐसी खास अदायगी की है कि जब जब आंखों से और चेहरे से अभिनय की बात चलती है तो श्यामा का नाम आता है।

श्यामा को बचपन से ही एक्टिंग और डांस से बेहद प्यार रहा है। स्कूल के दिनों में लंच टाइम में वे डेस्क पर खड़ी होकर डांस किया करती थी। बाद में उन्होंने नृत्य और गायन की बाकायदा तालीम ली। घर में फुर्सत के लम्हों में डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। अब सुनिए फिल्म शारदा का ये गीत।

0: श्यामा को फिल्म शारदा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म देखने की बड़ी शौकीन रही हैं श्यामा। खास बात यह है कि करीब करीब हर फिल्मों से जुड़ी उनकी याद आज भी ताजा है।
1: जब मैं साइड हीरोइन बनी
2: जी,
1: तो तब दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर आई थी मेरी, और उसका नाम था तराना
2: जी,
1: जिसमें थी मधुबाला और दिलीप साहब और श्यामा ही कहूंगी अपने आप को अब।
2: बिल्कुल।
1: और इसके बाद फिर पिक्चर मिली मुझे सजा। सजा पिक्चर में भी देवानंद साहब थे और निम्मी जी।
0: उस दौर के जाने माने सिनेमेटोग्राफर फली मिस्त्री ने श्यामा की खूबसूरती को कैमरे के लेंस से देखते हुए और सेल्यूलॉइड पर उतारते हुए उन्हें दिल में उतार लिया। फली मिस्त्री और श्यामा पहले प्यार के बंधन में बंधे और सन 1953 में फली मिस्त्री से उनका विवाह हो गया।

0: रेगम।
1: सन 1979 में श्यामा अकेलेपन से घिर गईं और उनके पति फली मिस्त्री उन्हें इस फानी दुनिया में अकेला छोड़ गए। लेकिन श्यामा हिम्मत नहीं हारी, वे कदम दर कदम आगे बढ़ती गईं फिल्म संसार में। अभिनेत्री श्यामा ने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया। फिल्मी पर्दे पर लगभग एक दशक श्यामा का एक छत्र राज था, यानी पांचवें दशक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में उनका नाम शुमार था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की इस छवि को श्यामा ने कभी धूमिल नहीं होने दिया। उन दिनों सशक्त अभिनय के चलते उनके पास फिल्मों की भरमार थी, उनकी अदाकारी के जलवे थे और श्यामा उन दिनों खूब व्यस्त रही।

में श्यामा ने पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, लीड रोल भी किए, चरित्र अभिनेत्री के किरदार को भी बड़ी कुशलता से निभाया और कई फिल्मों में खलनायिका के रोल को भी पर्दे पर उन्होंने साकार किया। बहरहाल सुनिए बरसात की रात फिल्म का ये गाना।

0: मैंने ऐसे ऐसे डायरेक्टरों के साथ काम किया है कि वो कहते हैं ना कि प्यास बुझ गई
1: जी।
0: उसका नाम है बिमल रॉय
1: जी,
0: गुरुदत्त
1: जी,
0: कारदार साहब, फिर सत्यन बोस, फिर शक्ति सामंता, फिर ऋषिकेश मुखर्जी, फिर एसपी ईरानी, फिर बी मित्रा
1: जी,
0: और फिर आईएस जौहर, वो भी डायरेक्टर थे
1: जी।
0: और किन किन के नाम गिनवाऊं, बहुत ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके नाम फिलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन कई ऐसे भी डायरेक्टर आए जिनके साथ वाकई मेरी तमन्ना थी कि मैं काम करूं
1: जी।
0: वैसे तो मैंने बचपन से लेके अभी तक 60 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक आदि बचा होगा बेचारा
1: जिनके साथ
0: बेचारा
1: अच्छा।
0: जिनके साथ मैंने काम नहीं किया
1: जी। दोस्तों आइए अभिनेत्री श्यामा की मशहूर फिल्मों पर एक नजर डालें। फिल्म मिर्जा साहिबा, खानदान, छोटी बहन, स्वर्ण सुंदरी, भाई भाई, छू मंतर, लाला रुख, दरवाजा, धूप छांव, भागवत महिमा, शबनम, निशाना, रूपलेखा, पतंगा, तकदीर, आसमान, ठोकर, मुसाफिर खाना वगैरह वगैरह। बाद की कुछ फिल्मों में अभिनेत्री श्यामा चरित्र अभिनेत्री के रूप में नजर आई, लेकिन उन फिल्मों में भी उन्होंने अपने अभिनय की बारीकी से दर्शकों को खूब आकृष्ट किया। श्यामा की उस दौर की फिल्में हैं खेल खेल में, सेवक, अजनबी, नया दिन नई रात, हनीमून, सूरज और चंदा, कंगन, जिंदगी जिंदगी, पायल की झनकार वगैरह वगैरह। अभिनेत्री श्यामा चली गई इस फानी दुनिया से, दे गई फिल्मी दुनिया को खलिश और सन्नाटा।

जब इंसान नहीं रहता तब वो हमारे आसपास और ज्यादा रहता है। उसके न होने का एहसास कचोटता है, दुख देता है। जब सुनी थी श्यामा जी की आवाज तो वे सामने थी, उन्हें छूकर उन्हें नमन किया था, लेकिन आज सिर्फ उनकी आवाज है, वे नहीं है हमारे साथ।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM एंड 102.3 MHz पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी मिट्टी की खुशबू के साथ हम हाजिर हैं नमस्ते हिसार लेकर, जहां हर सुबह लाती है नई उम्मीद, हर शब्द जुड़ता है आपके जीवन से, और एक ऐसा मंच है ये जो आपको जोड़ता है अपने शहर, अपने लोग और अपनी सोच से। तो जैसा कि आप जानते हैं, नमस्ते हिसार में हम शुरुआत करते हैं हिसार के आसपास की खबरों के साथ। तो स्वागत है आप सभी का, जुड़ते हैं हिसार और आसपास की खबरों के साथ।

नमस्कार, जोरदार अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। आप सभी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं इस रंगीन कार्यक्रम का। तो स्थानीय समाचारों के साथ मैं सोनू अमरवाल। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित। उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए पात्र बच्चों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक आवेदक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अपना नामांकन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण बचाव, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं, वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। उपायुक्त ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ही अप्लाई किए गए आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे।

बीएससी बीएड व बीए बीएड कोर्सों में दाखिला प्रक्रिया शुरू। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम ITEP के अंतर्गत बीएससी बीएड व बीए बीएड कोर्सों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने गुरुवार को दाखिला पोर्टल का उद्घाटन किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई ने इस अवसर पर कहा कि गुजबी का शिक्षा विभाग राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त विभाग है। एक अच्छा शिक्षक केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाता बल्कि वह व्यक्तित्व का निर्माण करता है और राष्ट्र के भविष्य को दिशा देता है। उन्होंने कहा कि ITEP प्रोग्राम का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो ज्ञानवान होने के साथ साथ संवेदनशील, नवाचारी और समाज के प्रति उत्तरदायी हों। शिक्षा संकाय की अधिष्ठाता प्रोफेसर वंदना पूनिया ने कहा कि गुजवी में ITEP प्रोग्राम का उद्देश्य कौशल युक्त शिक्षक तैयार करना है जो विकसित भारत संकल्प अभियान में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। इस अवसर पर डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर योगेश चाबा, डीन शिक्षा संकाय प्रोफेसर वंदना पूनिया, कुलपति के तकनीकी सलाहकार प्रोफेसर विनोद छोकर, PDUCIC के निदेशक मुकेश अरोड़ा, कुलदीप कुंडू व भारत भूषण उपस्थित रहे।

0: एक मौका है
1: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
0: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
1: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
0: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
1: आकाशवाणी हिसार के साथ।
2: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
0: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
1: रोज सुबह 7:40 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: अर्ज किया है रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
0: अरे बुद्धू मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
1: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
1: हर मंगलवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। श्रोताओं आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक। और अब आपको इंतजार होगा कुछ सवालों का जो हम आपसे पूछते हैं रोज, और जाहिर सी बात है कि वक्त हो चला है आपकी दिमागी कसरत का। तो आज हम आपसे 2 सवाल रोज की तरह पूछ रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी श्रोता सही जवाब भेजेंगे उनके नाम हम प्रसारित करेंगे अपने कार्यक्रम में, और जो सबसे पहले जवाब देगा उनकी पसंद का गीत भी सुनवाया जाएगा। तो अपना पसंद का गीत भेजना हमें ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। हमारा पहला सवाल है कि हेमा मालिनी की दोहरी भूमिका वाली ऐसे फिल्म का नाम बताइए जिसमें धर्मेंद्र और संजीव कुमार ने भी मुख्य भूमिका निभाई हो। सवाल एक बार फिर से सुनिए, हेमा मालिनी की दोहरे किरदार वाली फिल्म का नाम बताइए जिसमें धर्मेंद्र और संजीव कुमार ने भी मुख्य भूमिका निभाई हो। और दूसरा सवाल हमारा है कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप झटपट अपना जवाब व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तब तक हम सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

0: देश के हर कोने से आती है ये आवाज।
1: हेलो,
0: आपके दिल की धड़कन और आपके मन का सुकून भला कौन?
1: जी हाँ,
0: हेलो के साथ आपका अपना फोन इन फरमाइशी प्रोग्राम। अब आप पूछेंगे कि तो नंबर है 01662 297827। क्या कहा? किस वक्त करें फोन। रिकॉर्डिंग का समय है हर शुक्रवार दिन में 11 से 11:30 बजे और प्रसारण होगा हर शुक्रवार और रविवार शाम 5 बजे। रुकिए रुकिए, इतना ही नहीं, अगर आप सुना भूल जाएं तो कोई बात नहीं, उसी कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण होगा शनिवार और सोमवार रात 10 बजे। तो हर शुक्रवार रहिए तैयार अपनी आवाज हम तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें है आपके हेलो का इंतजार। क्या आप परेशान हैं?
2: मैं परेशान।
3: क्या आप खुश हैं?
4: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
3: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
5: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
0: या आप प्यार में हैं?
6: पहला पहला प्यार है।
3: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
7: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
3: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
8: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई ऐसा नाम होता है जिसकी कहानी हमें रुकने नहीं देती, जिसका संघर्ष हमें आगे बढ़ना सिखाता है। रोज हम ऐसे ही प्रेरक व्यक्तित्व की बात करते हैं आपके सामने, और आज भी हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने हालातों से हार नहीं मानी और अपने हौसले से एक मिसाल कायम की।

जन्मभूमि भी रही। वो हिसार की पहली महिला थी जिन्होंने किसी विदेशी विश्वविद्यालय यानी हवाई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। हालांकि उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की और बाद में यानी 1978 में नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त की। अपने सार्थक जीवन के 77 वर्ष और 3 महीने पूरे करने के बाद सुश्री सत्यबाला का 6 जनवरी 2002 को नागपुर में निधन हो गया। उनके बहुत सारे सामाजिक कल्याण के कार्य थे। जब 1947 में देश का विभाजन हुआ तो उन्होंने पश्चिमी पंजाब से आए शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कड़ी मेहनत की थी। लगभग 1950 के आसपास हिसार जिले में भीषण अकाल पड़ा था, तब उन्होंने एक महिला राहत समिति का गठन किया और 50,000 रुपए एकत्र किए। उन्होंने दूध और चारा वितरित करके महिलाओं और पशुओं के कल्याण के लिए भी काम किया। जब आचार्य विनोबा भावे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लगभग 1960 में भूदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हिसार का दौरा किया तो कुमारी सत्यबाला ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी भूमिका केवल हिसार जिले तक सीमित नहीं थी। इसके अलावा डॉक्टर सत्यबाला तायल के मात्र सेवा संघ नामक एक सामाजिक कल्याण संगठन से भी घनिष्ठ रूप से उनका जुड़ाव रहा। ये क्षेत्र की एक प्रसिद्ध महिला कल्याण संस्था है। जब 1958 में नागपुर में मातृ सेवा संघ की स्थापना हुई तब पद्मश्री कमलाताई हॉस्पिट ने उन्हें आमंत्रित किया था। ये संस्था आज भी सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रही है। इनके बारे में कुछ और बातें करेंगे इस गीत के बाद।

हिसार के सबसे प्रख्यात सार्वजनिक महिलाओं में से कुमारी सत्यबाला थी। वो हिसार के एक प्रसिद्ध तीर्थ लाला जयदेव तायल की पुत्री थी। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1924 को हिसार में हुआ था और उनका पालन पोषण भी यहीं हुआ। 1972 तक हिसार नगर उनकी

दोस्तों, हम बात कर रहे थे सुश्री सत्यबाला जी की। सामाजिक कल्याणकारी कार्यों, विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत काम किए। उदाहरण के लिए, उन्होंने 1961 से 1972 तक जागरूक महिला नामक एक महिला पत्रिका का संपादन किया था। उन्हें पंजाब और महाराष्ट्र सरकारों के साथ साथ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा कई बार सम्मानित किया गया। उनके कुछ प्रमुख सार्वजनिक सम्मानों में सावित्रीबाई फुले पुरस्कार और विश्वाल्य पुरस्कार शामिल है। ऐतिहासिक दृष्टि से डॉक्टर सत्यबाला तायल हिसार में जन्मी पहली महिला थी जो उच्च शिक्षित व्यापक रूप से यात्रा करने वाली थी। उन्होंने ब्रिटेन, कनाडा और डेनमार्क का दौरा किया था और वो सुशिक्षित थी। यद्यपि वो जीवन भर अविवाहित रही, फिर भी वो सामाजिक कल्याण, विशेषकर नारी उत्थान के नेक कार्यों के प्रति समर्पित थी। और इस तरह की महिला से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हमें भी दुनिया में आकर समाज के प्रति इस तरह के कार्य करने चाहिए जिससे हमारा नाम ऊंचा हो और लोग हमसे प्रेरणा ले सकें।

स्वागत है आपका नमस्ते हिसार में, और मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो साथी ऋतु कौशिक। और हम वापस आ गए हैं आपके उसी सेगमेंट पर जहाँ पे हमने पूछे थे आपसे दो सवाल और आपने फटाफट भेजे हैं उसके जवाब। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जिनके जवाब हमें मिले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ पढ़ने का सिलसिला। गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से ये मैसेज हमें भेजा है सही जवाब का। राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और परिवार के सभी सदस्यों ने इनके दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये अगला जवाब हमारे पास आया है राम कुमार रिवाड़, चंद्रकला रिवाड़ का, सादुल शहर राजस्थान से। इन्होंने भी दोनों सवालों के जवाब बिल्कुल सही भेजे हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आपको ये बता दें कि सही जवाब क्या है। हेमा मालिनी की दोहरे किरदार वाली फिल्म जिसमें धर्मेंद्र और संजीव कुमार ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी, इस फिल्म का नाम है सीता और गीता। और उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, इसका सही जवाब है जापान। राम कुमार रिवाड़ जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई सही जवाबों के लिए। अगला जवाब भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल ने। और इनके भी दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं, आपको बहुत बधाई। अगले सही जवाब हमारे पास आए हैं गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजा, सनाया, गुरदीप, बेबी किरत, अवाना का जवाब है ये। और इनके भी दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अगला जवाब आया है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजपाला, कार्तिक और वेदांश का। आपके भी दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं। और यहाँ ख़त्म होता है हमारे जवाबों का सिलसिला, तो आप समझ ही गए होंगे जिन्होंने जिनका नाम हमने सबसे अंत में पढ़ा है, यानी सज्जन झांगड़ा जी। आपके दोनों जवाब सही हैं और सबसे तेज़ जवाब आपका मिला है हमें, तो जाहिर सी बात है कि आपके पसंद का गीत हम भेज रहे हैं आप तक।

श्रोताओं, आप हैं नमस्ते हिसार कार्यक्रम में। अब थोड़ा सा ठहरिए, क्योंकि अब हम ले चलेंगे आपको जानकारी की उस दुनिया में जहां हर बात चौंकाती है, हर तथ्य सोच बदल देता है, कुछ ऐसा जो आपने शायद पहले कभी न सुना हो। वक्त है रोचक तथ्यों का।

तो श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम के उस हिस्से का जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा अनोखा उत्सव भी मनाया जाता है जहां लोग बाघ की तरह खुद को रंगते हैं, और ऐसा उत्सव है पुलिकाली महोत्सव। भारत की एक अजीबोगरीब परंपरा के रूप में ये कार्य करता है। यह त्योहार केरल के त्रिशूर जिले में हर साल मनाया जाता है, जहां प्रशिक्षित कलाकार बाघ के रूप में खुद को तैयार करते हैं और सड़कों पर नाचते हुए चलते हैं और पारंपरिक लोकगीतों पर प्रस्तुति देते हैं। यह खतरनाक परंपरा तो नहीं है, किंतु विचित्र जरूर है।

0: ऐसे ही विचित्र तथ्यों में शामिल है एक और नई परंपरा जहां भक्तों के सिर पर नारियल को फोड़ा जाता है। जी हाँ, ये परंपरा होती है तमिलनाडु के एक मंदिर में। उनका मानना है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और इस परंपरा को बड़ी ही निष्ठा से निभाया जाता है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

श्रोताओं, आपने सुने अभी रोचक तथ्य। और जैसा कि आपको पता है, भारत देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको विचित्र और रोचक तथ्यों की जानकारी FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आपको सुनाते हैं। हमने आमतौर पर बच्चों को हवा में फेंकते हुए, उनको खिलाते हुए देखा है, लेकिन क्या कभी आपने इसी चीज़ की कल्पना की होगी कि बच्चों को ऊपर से नीचे हवा में फेंकना भी एक परंपरा का हिस्सा हो सकता है? परिवार और बच्चे के भाग्योदय के लिए महाराष्ट्र के सोलापुर और कर्नाटक के संतेश्वर मंदिर अजीबोगरीब मान्यता लोग करते हैं। बताया जाता है, यहाँ पिछले 700 सालों से बच्चे को 50 फीट की ऊंचाई से फेंकते हैं और नीचे लोग बच्चे को चादर से पकड़ लेते हैं। कहते हैं ऐसा करने से बच्चा और परिवार का भाग्योदय होता है। तो इस प्रकार के रोचक तथ्य आपने भी बहुत सारे सुने होंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आया होगा।

चलिए एक और रोचक तथ्य आपको बताते हैं। आपने भारत में आमतौर में पेड़ से शादी करने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने मेंढक की शादी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। हमारे देश के ही कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश के लिए मेंढक और मेंढकी की शादी पूरे रीति रिवाज से कराई जाती है। दरअसल असम के जोरहाट जिले के गांव के लोगों का मानना है कि अगर पारंपरिक हिंदू विवाह में जंगली मेंढकों की शादी की जाती है तो इससे लंबे समय तक सूखे का अंत होता है और कुछ दिनों के भीतर भारी बारिश होती है, और इन मेंढकों की शादी परंपराओं का पालन करते हुए कराई जाती है जिसमें पुजारी भी सम्मिलित होते हैं। तो सुना आपने कितना कितना रोचक तथ्य है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। आज बाल श्रम निषेध दिवस है। आज हम एक ऐसे सच के सामने खड़े हैं जो हमारी आत्मा को झकझोर देता है। बाल श्रम निषेध दिवस केवल जागरूकता का दिन नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है कि हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं। यह दिन उन मासूम चेहरों की कहानी कहता है जिनकी उम्र सपने देखने की थी लेकिन जिन्हें पेट भरने की चिंता ने समय से पहले बड़ा बना दिया। वे नन्हे हाथ जिनमें खिलौने होने चाहिए थे आज ईंट पत्थर बर्तन और बोझ थामे हुए हैं। वे आंखें जिनमें भविष्य चमकना चाहिए था आज थकान और बेबसी से भरी हैं। बाल श्रम सिर्फ बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनता बल्कि पूरे समाज के भविष्य को अंधेरे में धकेल देता है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि बदलाव की शुरुआत चुप्पी से नहीं आवाज से होती है, संवेदना से, संकल्प से और ठोस कदमों से। आइए हम मिलकर यह प्रण ले कि कोई भी बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, हर बच्चा पढ़ेगा, खेलेगा और सम्मान के साथ अपने सपनों को जिएगा। श्रोताओं, इसके बारे में आगे पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं।
1: पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी जिसका मकसद बाल श्रम को रोकना था। मालूम हो इसको मनाने के पीछे खास वजह यह थी कि बच्चों को मजदूरी न कराकर उनको स्कूल की ओर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। मालूम हो कि बाल श्रम लगातार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है जिसके कारण बच्चों का बचपन गलत में जा रहा है और उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यह दिवस बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने और इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठनों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है।

श्रोताओं, इस साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के थीम सभी के लिए सामाजिक न्याय बाल श्रम का खात्मा है। संयुक्त राष्ट्र ने बाल श्रम पर कहा है कि पिछले 3 दशकों के इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। यूएन के मुताबिक अगर मूल कारणों को दूर कर दिया जाए तो बाल श्रम को खत्म किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 2 दशकों से पूरी दुनिया में बाल श्रम को कम करने के लिए लगातार पहल की जा रही है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान संघर्षों, संकटों और कोरोना महामारी ने विश्व में कई परिवारों को गरीबी में धकेल दिया है, जिसके कारण लाखों बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय विश्व के कई देशों में करीब 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जो दुनिया में मौजूद हर 10 बच्चे में से एक है।

दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी ये सुबह थोड़ी हल्की हो, थोड़ी मुस्कुराती हो और ढेर सारी सकारात्मकता से भरी हो। याद रखिए, हर दिन खास नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ खास जरूर छुपा होता है। अपने शहर से जुड़े रहिए, अपने लोगों से जुड़े रहिए और सबसे जरूरी, खुद से जुड़े रहिए। इसी अपनेपन, इसी स्नेह, इसी विश्वास के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगली सुबह इसी आवाज के साथ आकाशवाणी हिसार पर। अभी आप सुन रहे थे नमस्ते हिसार, FM एंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती के प्रसारण।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं ताजमहल फिल्म की इस कव्वाली से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। साहिल के बोल, रोशन का संगीत।

राजमहल फिल्म की ये कव्वाली आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, तर्ज रोशन की थी। आइए अब सुनते हैं छाया गांगुली के स्वर में एक गीत। ये रचना है महादेवी वर्मा की लिखी हुई, जयदेव ने संगीत तैयार किया। फिल्म का नाम त्रिकोण का चौथा कोण।

0: पंकज उधास की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी। कलाम था कैसर उल जाफरी का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
1: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिताली मुखर्जी के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। आइए अब सुनते हैं एक फिल्मी गीत जगजीत कौर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल है, खयाम का संगीत, फिल्म शगुन। Oh,

लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे सजदा एल्बम से ये गजल। ये है मीनू पुरुषोत्तम की आवाज, कलाम सरदार अंजुम का।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं। सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, चिकित्सा, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व आधारित विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को संपन्न होगी। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी।
1: अब सिर्फ एक एमओयू से ही 1000 से 1500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
0: सरकार ने संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को खुदरा विक्रेताओं से मोटर ईंधन और हाई स्पीड डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि वे अपनी जरूरतें घरेलू पेट्रोल पंप से पूरी करें। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और निर्बाध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों तथा अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुलतारंता वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का असर प्रभावित क्षेत्रों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी होता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नागरिक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से होगा।

0: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स 854 अंक बढ़कर 74,687 पर और निफ्टी 221 अंक की वृद्धि से 23,382 पर कारोबार कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सदमा फिल्म के गाने से। सुरेश वाटकर की आवाज है, गुलजार के बोल, इलैया राजा का संगीत है।

0: तक छुपाए रखा, छोला दबाए रखा,
1: छुपाए रखा, छोला दबाए रखा।
0: राज हमने अब खोला है, गॉड प्रॉमिस, हम सच बोला है, और हमको तुम

मुखद से के साथ तमाम मैं शायर हूँ मेरा है वास्ता हसीनों से तेरी फुर्कत में मैं सोया नहीं।

0: कच पाए रखा शोला दबाए रखा
1: छुपाए रखा शोला दबाए रखा
0: उसने हमेशा

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितु प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तारे जमीन पर इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में प्रसून जोशी के बोल थे। शंकर एहसान लॉय का संगीत था। नमकीन फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है। जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

गरहा, ई रांझा।

0: देखो मुझको दिलवानो आया है जो कहा मैंने यार का।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का गाना आप सुन रहे थे राहुल देव बर्मन की आवाज में। संगीत भी राहुल देव बर्मन का था और रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी की। नमकीन फिल्म का गाना सुनिए आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, राहुल देव बर्मन का संगीत है।

0: cada bimbera.
1: Ha ha ha ha ha!

0: अम्मा सर पे टोकरी लिए सारा दिन गांव में घूमा करती है, गोबर जमा करती है, टिकले थापती है, सुखाती है और जाके गांव में बेच आया करती है। बदलते हुए वक्तों से बड़ी शिकायत है उसे, गांव से तो क्या गायों से भी शिकायत करती है।
1: इस गीत के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, ना हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं इस कार्यक्रम के लिए। इस एक पैराग्राफ में वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। आपको पढ़कर अंदाजा लगाना है कि आज के कार्यक्रम में कौन कौन से शब्दों पर गाने शामिल हो सकते हैं। इस कार्यक्रम का मजा है इस बात में है कि गानों की आपकी और हमारी लिस्ट मैच कर जाए। मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आप बता सकते हैं, क्या पता वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर लिए जाए। और हाँ, अगर हमने गाने चुने हैं और आपने, कई श्रोताओं ने वही वही गाना लिखा है, तो हम अपने गाने बदलकर आपके वाले गाने भी बजा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम आप सुनेंगे ही, और ध्यान से जरा आज की इबारत पढ़ लीजिए, हम सुना देते हैं, सुन लीजिए। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा, क्या यही खता है? हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा, फिर कब मिलोगे, इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा, तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना, उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा, जिंदगी में शायद साथ इतना ही था। और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं की ओर से गाने सुझाए गए हैं, लेकिन हम कुछ खास शब्दों से पूछ रहे हैं कि कौन से गाने आपके जहन में आ रहे हैं। दिल शायर बन गया, इसका गाना बताइए, और बताइए कि दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा, और बताइए कि संभालने वाली जो बात है, यहाँ पर कहीं संभालने की बात आई है, उस पर कोई गाना बताइए। क्योंकि इन शब्दों पर कुछ गाने कम हैं, इसलिए मैंने यहाँ जानबूझ कर रखा है कि देखें आपको याद आता है कि नहीं। जैसे कि एक बार जो सनम से दिल लगा, यहाँ पर कौन सा गाना याद आया है। अब चलिए गीतों के माध्यम से एक कहानी भी सुनवा देते हैं। उस कहानी से जुड़ी हुई कौन सी कहानी आपको याद आती है जरा बताइए। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी आपने, सुनिए ये गाना और याद कीजिए कोई कहानी या फिर कोई गाना या फिर कोई अपनी जिंदगी की कोई घटना, जो यहाँ विविध भारती के फेसबुक पेज पर लिख सकते हैं। तो बताइए कहानी, और आप भी कोई इबारत लिखकर भेज सकते हैं।
1: अभी आप विविध भारती के प्रसारण सुन रहे थे। एफएम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और सुशासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूरे देश में समावेशन परिदृश्य बदल रहा। शिक्षा उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के ज्ञान और शासन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और अलग अलग क्षेत्रों में। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अब पूरे देश में परिदृश्य बदल रहा। शिक्षा उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने
1: हमारी बहनों के पास हुनर भी था, मेहनत भी थी, लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है। मेहनत भी थी लेकिन उन्हें पूंजी और अवसर नहीं मिलते। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
2: उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयास सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर आधारित हैं, जिससे ऐसा माहौल बनाने में मदद मिली है जिसमें महिलाएं अपनी पूरी क्षमता को पहचान सकें तथा राष्ट्र निर्माण में और मजबूती से योगदान दे सकें। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भारत की नारी शक्ति को अपनी पहचान बनाते हुए देखकर खुशी जाहिर की। संस्कृत का एक श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी असाधारण प्रतिभा और कौशल से भारत माता का गौरव बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने के प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने के प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से ये भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। सरकार ने कुछ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क 0 रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में हरियाणा के विकास से जुड़े कई मांगें रखी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा को उसकी महत्वाकांक्षी औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित किए जाने वाले पहले 50 औद्योगिक पार्कों में शामिल किया जाए। उन्होंने हरियाणा को सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने और AI वैश्विक क्षमता केंद्र के विकास के लिए एक विशेष केंद्रीय पैकेज देने का अनुरोध किया। उन्होंने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, सेक्टर विशिष्ट औद्योगिक पार्कों, ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की भी मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय नवाचार एवं अनुसंधान फंड के तहत हरियाणा को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप अपना विजन दस्तावेज 2047 तैयार किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी प्रादेशिक समाचार FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, एक बार फिर आनंद लीजिए विविध भारती के प्रसारणों का।
1: करने में सक्षम है, चाहे वो प्रेमी दिलों की हो या आपसे रिश्तों की, प्रेम ही शाश्वत है। बहुत पते की बात आपने लिखी है कि अगर इस दुनिया से प्रेम हटा दिया जाए तो दुनिया कैसी हो जाएगी, एकदम बेरंग, सूनी, उदास। प्रेम के सहारे ही तो रिश्ते बनते हैं, प्रेम के सहारे ही तो परिवार बनता है, समाज बनता है। ये सृष्टि की रचना ही प्रेम से हुई है। चलिए अब छोटी सी मुलाकात, ये फिल्म का नाम है, सुनिए गाना और बताइए गीतकार का नाम।

छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी। अभी पिछले दिनों ये खबर आई थी कि गायिका सुमन कल्याणपुर नहीं रही, तो कितना दुख पहुंचा था, कितना अवसाद हुआ था हम सभी को, जितने उनके चाहने वाले हैं। सचमुच एक अलग तरह की आवाज थी। अब हम आपकी टिप्पणियों पर आते हैं। श्रोता ने लिखा है कि आजकल प्रेम की जगह मोबाइल ने

रैली है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत से सालों से मेरी तुझसे पहचान है आपके लिए। वैसे एक इस गाने में ये लाइन भी आती है, अनगिनत सालों से मेरी तुझसे पहचान है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि कब किससे पहचान हुई, कौन सी पहचान

जहाँ कुछ अजनबी लोग मिलते हैं वहाँ मुलाकात होती है तो कुछ रिश्ते बन जाते हैं, कई बार दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, प्रेमी प्रेमिका का। तो आप ये भी बता सकते हैं अपनी यादें साझा करते हुए। एक श्रोता ने लिखा है, बचपन में नानी जी सुनाती थी कहानी, जब हम गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाते थे, खूब लंबी लंबी कहानियां, दादी और दादाजी बहुत प्यार करते थे। एक श्रोता ने लिखा है, नवीं कक्षा में था जब मैं एनसीसी कैंप गया था, रोजाना ही जूनियर से कुछ न कुछ अफसर लोग हमसे पूछते रहते थे, लेकिन एक दिन कहानी किस्सों की बात हो रही थी तो सर ने पूछा, कल्चरल प्रोग्राम का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सुबह परेड पर 4 बजे आना है ग्राउंड पर, लेकिन मेरी नींद लग गई, बार बार सीटी बजाने के बाद भी नहीं उठ पाया, तो जो हमारे सीनियर थे उसने हमारे टेंट में आकर खूब पिटाई हुई और उसके डर से 2 दिन तक बीमार होने का मैं नाटक करता रहा। भाई नाटक क्यों किया, पिटाई भी ठीक नहीं थी लेकिन ना कुछ न कुछ तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक अनुशासन तो होना चाहिए छात्र जीवन में। एक श्रोता ने जानकारी दी है, एक छोटी सी मुलाकात 1967, आवाज मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर, और तुझे चाहा तुझे पूजा, ये तो गाने के बोल हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कोई माने या न माने, जो कल तक थे मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, बहुत सारे गानों की इबारत हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि आप इन्हीं इबारतों से आप कोई और पंक्ति रच सकते हैं, कोई कविता रच सकते हैं, हो सकता है आपकी रची कविता एक दिन आपको कवि बना दे, कहानीकार बना दे। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की कहानी, एक चिड़िया की कहानी जो अपने दाल की चोरी होने पर सभी से गुहार लगाती है और अंत में वो जीत जाती है, ये कहानी बाबूजी हम लोगों को सुनाया करते थे और मैं भी अपने बच्चों को सुनाती हूँ। क्या बात है भाई, गानों से देखिए कितनी सारी बातें याद आ गई, इसलिए गाने जब हम सुनते हैं तो गानों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत सारे शब्द हमें यादों में ले जाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर कब मिलोगे, ये गाना हमें बहुत पसंद है, और बहुत सारे श्रोताओं की ओर से फरमाइश आई है भरोसा फिल्म के गाने की, वो दिल कहाँ से लाऊं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि जो इबारत है उनमें वो शब्द होने चाहिए, तो देखा कि उनमें ये शब्द है तो चलिए वो गाना हम सुनवाते हैं, फिल्म है भरोसा। कलाकारों के नाम जरा बताइए कि पर्दे पर कौन गा रही है, कौन अभिनेत्री गा रही है ये गाना, वैसे पार्श्व गायिका है लता मंगेशकर। गीतकार संगीतकार का नाम आप बता सकते हैं अगर आप ये नहीं बता सकते कि कौन है अभिनेत्री, हीरो का नाम भी बताइए आप ही, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

भरोसा फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे रवि का संगीत था, और हमने पूछा था पर्दे पर कौन अभिनेत्री गा रही हैं ये गाना। अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब नहीं मिला। आशा पारिख और गुरुदत्त हैं इस फिल्म में हीरो। देखिए साथ साथ पहलियों के जवाब भी देते चलिए, क्योंकि इबारत के साथ साथ पहलियां भी शामिल है कि हम आपसे पूछते हैं जो सवाल, आपके जवाब का रहता है हमें इंतजार, और हम बाकायदा कमेंट को न्यूएस्ट कर देखते हैं कि नए कमेंट कौन आ रहे हैं। बस टिप्पणी साझा करके आप बैठ गए रेडियो सुनने, नहीं जी, हम आपको बिल्कुल साथ में लगा के रखते हैं, संलग्न रहे आप, ये हमें अच्छा लगता है जानकर। बहरहाल एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ते हैं। कुछ मुलाकातें दिल में ऐसे ठहर जाती हैं जैसे माथे पर गिरी बारिश की पहली बूंद, हम उस पल को कभी भूल नहीं पाते, गाकर लिखकर रोकर हम उन लम्हों को फिर मिलने की चाह में याद करते रहते हैं। प्रेम की सारी मुलाकातें, सारी दूरियां, सारी शिकायतें उसे एक लम्हे की याद में एक रुदन बन जाता है कि किसी को चाहना क्या एक सजा है। जिंदगी में चाहे कुछ लम्हों का साथ ही क्यों न हो, जाने वाले कभी नहीं जाते, वे रह जाते हैं कुछ अधूरी बातों में, मुलाकातों में और उन जगहों में जहां से कभी हम साथ गुजरे थे। और आपके दिल में, दिल वो जगह है जहां से कभी कोई जाता नहीं, हमेशा टिका रह जाता है। आप चाहें भी कि फला व्यक्ति दिल से चला जाए, लेकिन नहीं, मुमकिन नहीं होता है। तो अब चलिए यादों के गलियारों में चलते हैं। कौन सी यादें आपके जहर में दस्तक देती हैं, ये बताइएगा आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai की टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब आ रहा है गाना उमर कैद फिल्म का। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं इस बार सही कौन जवाब देता है। और यादों के गलियारों में जाकर कौन सी याद आई है, एक लाइन में बताइए।

0: यादों के नाम बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई हैं और कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम यहाँ नई जगह रहने आए तो एक प्यारी सखी मुझे मिली और हमने बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन हमारा साथ बहुत कम समय के लिए था, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। एक श्रोता ने लिखा है कि हम साथ हैं आपके, काम बाद में करेंगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिल कहाँ से लाऊं, बहुत मार्मिक है गाना। और एक श्रोता ने लिखा है कि आशा पारिक थी उस फिल्म में जिसका आपने पूछा था, भरोसा के लिए लिखा है। और एक श्रोता ने, क्या कई श्रोताओं ने लिखा है, दिल आशायर गमाज नगमा। हो सकता है इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये गाना मिल जाए। बस ये बताइएगा कि आपको अगला गाना कौन सा आ सकता है, जरा ये भी तो अंदाजा लगाइए। देखते हैं कि आप, वैसे गाने तो आपने बहुत सारे लिखे हैं जो हमारे पास हैं, जो मतलब हमारी और आपकी पसंद आज बहुत सारी मिल रही है। और ये जो वो दिल कहाँ से लाऊं, ये तो हमने आपकी पसंद पर ही सुनाया। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही गंभीर गाना है वो दिल कहाँ से लाऊं, सुपर हिट सॉन्ग है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म भरोसा के नायक और नायिका हैं गुरुदत्त, आशा पारिख। और भरोसा के गाने के लिए बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है। एक श्रोता ने लिखा है 1970 में खुले ग्राउंड पर शाम को हम अपने मामा मामी के साथ ये फिल्म देखी थी। और एक श्रोता ने जानकारी दी है आशा पारिख, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार रवि, फिल्म भरोसा। अब जरा कुछ और टिप्पणियां भी पढ़ दी जाए। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है, पिताजी प्यासे कौवे की कहानी सुनाते थे, बाद में ये किताब में पढ़ा मैंने, मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, प्यासा कौवा वाली कहानी। और आप में से किस किस लोगों ने सुनी थी, किन किन लोगों ने, जरा बताइएगा। और जब प्यासा कौवा की कहानी सुनते थे तो आंखों के सामने क्या चित्र बनता था, वो भी बता सकते हैं। अब तो सामने आपके टेलीविजन पर देख लेते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पर देख लेते हैं, लेकिन तब वो काल्पनिक चित्र बना करता था और अब किताबों में चित्र बने बनाए आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मैंने अपने डायरी में लिखा था और गाती भी थी, ये 1990 की बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमारे साथी की बात याद आई, अरे फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना, पर अफसोस वो अपने ही है, उफ। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं वादा करना जितना आसान है उसे निभाना उतना ही मुश्किल, जब कोई वादा टूटता है तो सिर्फ एक बात अधूरी नहीं रहती बल्कि किसी का अटूट विश्वास कांच की तरह बिखर जाता है। वादे अगर कांच के हों तो टूट जाते हैं और अगर कच्चे धागे के हों तो छूट जाते हैं। क्या बात है भाई, ये वादे वाली बात आपने बेहतरीन लिखी है। अब कन्यादान फिल्म का ये गाना,
1: चेहरे से सकता नहीं।
0: हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है।
1: दिल की बेताबी किसी सूरत छुपा

0: कन्यादान फिल्म का गाना था मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन का संगीत था और हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है आशा पारिक और शशि कपूर। जरा उन श्रोताओं के लिए जो विविध भारती के फेसबुक पेज पर इस वक्त उपलब्ध नहीं है लेकिन रेडियो सुन रहे हैं, उनके लिए हम इबारत दोहरा देते हैं। कुछ बातें दिल नहीं मानता, कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती, किसी से मुलाकात कोई कहानी बन जाती है, तमन्नाओं और ख्वाबों का जहां आबाद हो जाता है। फिर एक सवाल उठता है, दिल ने तुम्हें चाहा क्या ये खता है, हुई जो मोहब्बत तो दिल ने कहा फिर कब मिलोगे इस बात का वादा करो। एक बार जो सनम से दिल लगा तो दिल दीवाना गाने लगा, लागी छूटे ना उसकी अदाएं मन मोहने लगी, दिल को संभालना मुश्किल हो गया, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, दिल दर्द भरे गीत गुनगुनाने लगा कि कहीं मुलाकात अधूरी न रह जाए, गले से लग जा। जिंदगी में शायद साथ इतना ही था और फिर दिल शायर बन गया गम नगमा। मोहब्बत का दस्तूर भी कितना अजीब है। बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आ रही हैं। इस इबारत के साथ आप भी कोई इबारत लिख सकते हैं, हो सकता है आपके भीतर छुपी प्रतिभा परवान चढ़े और एक कवि हो जाएं आप, एक कहानीकार हो जाएं। बहरहाल ये जो दिल शायर बन गया इसको लेकर बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है और एक गाना चुना है हमारे श्रोताओं ने गैम्बलर फिल्म का, बिलास शायर है गवाज नगमा। तो चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन जरा बताइए कौन है हीरो, हीरो का नाम बूझना है आपको।
1: गवाज नगमा है सब ये गजल है सनम,
0: गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

0: गैम्बलर फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया देव आनंद, और गीतकार संगीतकार का नाम कुछ श्रोताओं ने गलत भी दिया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि बचपन में सबसे पहले कहानी सुनी थी चिड़िया और कौवे की। चिड़िया मोम से घर बनाती है, कौवा गोबर से घर बनाता है। बरसात में कौवा का गोबर का घर बह जाता है और भीगा कौवा चिड़िया के मोम के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन घर छोटा होता है और चिड़िया अपने छोटे चूजे को खाना खिलाने में व्यस्त होती है, इसलिए वो कौवा को अंदर आने नहीं देती। इस तरह की कहानियां बहुत प्रचलित है और हम सबने अपने अपने बचपन में सुनी है। दरअसल वो जो कहानी वाला बचपन था कहीं गुम हो रहा है। अब कहानियों के बजाय मोबाइल वाला बचपन है। अब बहुत सारे मम्मी पापा को कहानियां याद ही नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग आकर पूछते हैं कि कोई कहानी वाली किताब बताओ ना जो हम पढ़कर सुना दें, या कोई वो बताओ, लिंक बताओ जहां हम उसे लगा दें तो सुनते सुनते सो जाए। भाई वो लिंक वाली कहानी का वो सुख नहीं है जो माँ अपनी जबान से मॉड्यूलेट करके स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ सुना। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि लिखना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर ये वक्त बहुत जालिम है, मिलता ही नहीं। वक्त को मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश कीजिए और लिख डालिए। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना, रिश्ते को पवित्र रखना है और बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आप अपनी बहुत अच्छी दोस्त याद आ गई इस प्रोग्राम के साथ और अपना प्यारा पुराना घर याद आ गया जहां मेरी दादी और दादा रहते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत के साथ मैंने भी कुछ लिखा है कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। मशहूर शायर साहिल दहनवी की पंक्तियां प्रेमियों के दिलों की हालात बयां करती हैं कि हर प्रेम कहानी मुकम्मल नहीं होती, प्रेम कहानी करवट लेती और उसमें विरह उत्पन्न हो जाता है। वो प्रेम जीवन भर नदी के दूसरे छोर की तरह साथ साथ चलता है, महसूस भी होता है किंतु ता उम्र पहले छोर से मिल नहीं पाता। भाई प्रेम के साथ दर्द तो जुड़ ही जाता है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा भाई क्यों कहती कि जो मैं ऐसा जानती नगर ढिंढोरा पीटती, प्रेम किए दुख होए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला गाना सुनते हैं। जरा बूझिए आप गीतकार का नाम और स्वर किसकी आवाज में ये गाना है, फिल्म बड़ा आदमी। और कोई नहीं बूझ पाया ये गाना, बहुत सारे श्रोताओं ने अलग अलग गाने लिखे लेकिन ये गाना किसी ने नहीं लिखा। जरा सुनिए तो, और जरा संभालिए अपने दिल को और नोट कर लीजिएगा डायरी में ये गाना भी, जो लोग नियमित रूप से नोट करते हैं गाना।
1: संभालिए अदाएं आपकी के मेरे हाथ से दिल मेरा जाने लगा, जरा संभालिए।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और आपसे पूछा था गीतकार का नाम और किसकी आवाज में गाना है। सभी श्रोताओं ने सही बताया, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजें, लेकिन गीतकार का नाम बहुत सारे लोगों ने गलत बताया, प्रेम धवन की रचना थी।

एक श्रोता की टिप्पणी है, इन्होंने लिखा है कि मोहब्बत का फलसफा अजीब है। जब प्रेम अपने रंग में होता है तो साधारण से दिन भी उत्सव लगने लगते हैं। हर आहट में संगीत सुनाई देता है और हर ख्वाब में उम्मीदों के फूल खिल उठते हैं। लेकिन यही मोहब्बत जब अधूरी रह जाती है या बिछड़ने की दास्तान बनती है, तब वही फूल यादों के चुभन और अशकों की नमी में बदल जाते हैं। मोहब्बत इबादत भी है और इकरार भी है, मुकद्दर के इम्तिहान की तरह कठिन भी। शायद इसीलिए मोहब्बत का फलसफा अजीब होते हुए भी बेहद खूबसूरत है, क्योंकि ये इंसान को जीना, मुस्कुराना, इंतजार करना और कभी कभी टूटकर फिर से संभलना भी सिखा देता है और बहुत सहनशीलता भी सिखाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे चाचा जी बाहर गांव सर्विस करते थे, तो उन्होंने एक रेडियो लाया था। वो वापस सर्विस पे जाते थे तो रेडियो पूरे दिन मेरे पास रहता था। तो आज की इबारत बहुत सुंदर लग रही है और मैं वो दिन याद कर रहा हूँ। शुक्रिया इस बात के लिए। अब बहुत सारे श्रोताओं की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है, फिल्म ये रात फिर ना आएगी, और जो इबारत है, इबारत में जो शब्द है, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, तो इसमें कई शब्द आ जाते हैं। प्यार वाले शब्द भी आते हैं, इकरार वाले भाव भी आते हैं। तो सुनिए जरा ये गाना और हमें बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत और गीतकार का नाम। और आपको अपनी मुलाकात याद आती है किसी से, तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। यादों के गलियारों में आप टहल रहे हैं इन गानों के माध्यम से, तो अपनी यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। कभी किसी से आपने ये बात कही थी जो गाने में है? कभी किसी से पूछा फिर कब मिलोगी?

गीतकार एसएच बिहारी आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें फिल्म ये रात फिर ना आएगी और श्रोताओं की ओर से जानकारी आई है शर्मिला टैगोर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी पत्नी से मेरी पहली मुलाकात मेरे जीवन का एक यादगार पल है, इस गाने के साथ जुड़ा हुआ है। पहली बार उन्हें देखकर मन में अपनापन और सम्मान का भाव जागा। उनकी सादगी, मुस्कान और सहज स्वभाव ने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मुलाकात भले ही छोटी थी लेकिन उसी ने हमारे रिश्ते की खूबसूरती की शुरुआत की। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल पार्क में गर्मी बहुत हो रही है, कभी कभी कोई नहीं आती है। जब चलने का समय होता है तब पूछती हैं कल आओगे ना, मिलोगे ना। भाई ये तो सहज सा सवाल है और ये इस गाने में जरूर है। और हमने पूछा था कि आपने कब किसको कहा था, पूछा था ये सवाल, तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। एक श्रोता की टिप्पणी है कि लिखा है कि अपने माता पिता द्वारा स्थापित रिश्ता है विवाह। अपने जीवन साथी से प्यार करना रिश्ते को पवित्र रखता है। बचपन की यादें जिन्हें हम प्रेम कहते थे पर विराम लगाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यासा कौवा वाली कहानी अपनी पोती को सुना रही थी, जैसे कि मैं हिंदी में सुना रही थी। पूरी कहानी सुनाने के बाद बोलता है, दादी ये प्यासा कौवा नहीं था, ये तो थ्रस्टी क्रो था। तब मैंने उसे बताया कि तुम्हें प्यास लगती है, तो बोलते हो ना कि मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हिंदी में प्यासा ही बोलते हैं। क्या बात है भाई। तो ठीक है, अगर वो थ्रस्टी क्रो के नाम से सुनता है तो भी उन्हें सुनाइए, धीरे धीरे वो प्यासा कौवा समझ जाएगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि जरा संभालिए अदाएं आपकी, ये गाना साल 1961 का है, बड़ा आदमी फिल्म का, बड़ा ही खूबसूरत और सदाबहार रोमांटिक युगल गीत है। इस गाने को सुर कोकिला लता मंगेशकर और दिग्गज गायक महेंद्र कपूर ने अपनी सुरीली आवाज से सजाया था। और अभी अभी एक टिप्पणी आई है, लिखा है हमारे श्रोता ने कि अनेकों प्रेरणादायक कहानियां बच्चों को बचपन से आज तक धर्म पत्नी सुनाती रहती है और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, मैं स्वयं व्यस्तता के कारण सुना नहीं पाता हूँ। चलिए अच्छी बात है, ये सुनते और सुनाते रहिए। अब फिल्म दिल ने पुकारा, बताइए पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना। मुकेश की आवाज है, गीतकार और संगीतकार का नाम भी बताइए।

और अब हम गाने के साथ थोड़ी सी बेवफाई करके ये गाना पूरा नहीं सुना रहे हैं, क्योंकि एक गाना जो जरूरी है इबारत से जुड़ा हुआ और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, दिल ने पुकारा फिल्म का ये गीत था, उसके बाद छोटी सी मुलाकात ये वाला गाना सुनवाना है, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि कुछ मुलाकातें टीस देती हैं, बात अधूरी रह गई, साथ छूट गया। कुछ एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पतिदेव मुझसे भोपाल मिलने आया करते थे, वो बात याद आ गई। एक श्रोता ने लिखा है कि सुबह से 10:30 बजे तक विविध भारती हम सुनते हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के साथ हमारी दोस्त याद आ गई, दादी और दादा याद आ गए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक लाइन में कहानी वाली बात, बहुत मजा आया पढ़कर। अब ये प्रोग्राम

0: छोटी सी मुलाकात, बस आज की मुलाकात तो बस इतनी ही हो सकती है। यही फिल्म का नाम था। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। आज के प्रोग्राम का सफर बस इतना ही। सुरीला सफर का यह सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: कार्यसाल अधिवेशन को पहले ही दिन मिले इस उत्स्फूर्त प्रतिसाद से बौखलाए हुए अंग्रेज अधिकारी जमा हुए युवाओं और नेताओं पर निर्मम लाठीचार्ज करके भी नहीं रुके। अधिवेशन के लिए आए सभी लोगों के नेता और आदरणीय स्थान रखने वाले सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ब्रिटिश अधिकारी कैंप ने गिरफ्तार कर लिया। उस दिन अदालत की छुट्टी होने के कारण उन्हें मजिस्ट्रेट के घर ले जाया गया। वहां सुरेंद्रनाथ ने सरकार की तानाशाही की कड़े शब्दों में निंदा की। इससे चिढ़कर मजिस्ट्रेट इमर्सन ने अदालत की अवमानना के लिए उन पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया, साथ ही जुलूस में भाग लेने के लिए 200 रुपये का जुर्माना और अलग से लगाया। वकील और सबूत पेश करने का अनुरोध भी इमर्सन ने ठुकरा दिया। सुरेंद्रनाथ ने तुरंत यह जुर्माना भरा और सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए अधिवेशन स्थल की ओर दौड़ पड़े।
1: वंदे मातरम शब्द पर प्रतिबंध लगाना, सुरेंद्रनाथ की गिरफ्तारी, उन्हें हुआ जुर्माना, लाठीचार्ज, ये सब गैर कानूनी था। उस परिस्थिति में भी वंदे मातरम की विराट गूंज के साथ अधिवेशन की शुरुआत हुई। वंदे मातरम गायन से सभा शुरू हुई। अश्विनी कुमार दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी अभी सभा स्थल पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए निवारण चंद्र दास गुप्त ने भाषण दिया। अध्यक्ष अब्दुल रसूल ने कहा,
2: हिंदू हो मुसलमान हो, हम सबको मिलकर ये आजादी की लड़ाई लड़नी है। हम सबको इसमें शामिल होना चाहिए। देश की भलाई के लिए हम में से हर एक को ये काम करना ही चाहिए।
1: ये भाषण चल ही रहे थे कि सभा मंडप के बाहर वंदे मातरम के नारे और शोरगुल सुनाई देने लगा।

0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी का सभा मंडप में आगमन हुआ। उनके आने से सभा स्थल पर जुटे युवाओं में और भी उत्साह भर गया। लाठीचार्ज के घामों से लहू लुहान हुए शरीर का ख्याल भी कार्यकर्ताओं को उस उत्साह के जोश में नहीं रहा। स्वयं सुरेंद्रनाथ भी इस प्रतिसाद से भाव विभोर हो गए। मंच पर पहुंचने के बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अत्यंत संयमित स्वर में मजिस्ट्रेट के बंगले पर घटी घटना सुनाई। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का भी भाषण हुआ।
1: बारिसाल का युवा नेता चित्तरंजन गुहा बुरी तरह से घायल हो गया था। एक दिन पहले ही निकले जुलूस में आगे रहने वाला यह युवक वंदे मातरम के नारे लगा रहा था और बाकी युवाओं से मिले प्रतिसाद से चिढ़े अंग्रेज अधिकारी ने इस युवक की बेरहमी से पिटाई की। उस खून से लथपथ हालत में भी वो वंदे मातरम के नारे लगाता ही रहा, इसलिए सिपाहियों ने उसे सामने के तालाब में फेंक दिया। साथियों के कारण उसकी जान बची। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि दिन दहाड़े सड़क पर वो भारत माता की जय जयकार कर रहा था। उस हालत में भी उसके पिता मनोरंजन गुहा उसे मंच पर लेकर आए। उनका भी भाषण हुआ।
0: दूसरे दिन 15 अप्रैल को सुबह फिर अधिवेशन शुरू हुआ। बिपिन चंद्रपाल युवाओं को मार्गदर्शन देने लगे। तभी बंग भंग विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संध्या के संपादक ब्रह्म बांधव उपाध्याय सभा स्थल पर आए। उन्हें देखकर तो प्रतिनिधियों ने फिर से वंदे मातरम के नारे लगाने शुरू कर दिए। वंदे मातरम पूरे गीत का और मागो जाए जौन जीवन चले गीत का भी गायन हुआ।

0: अश्विनी कुमार दत्त ने सभा के सामने प्रस्ताव रखा।
1: जिस स्थान पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार किया, उस स्थान पर इस घटना की याद में एक स्तंभ बनाया जाए।
0: इस प्रस्ताव पर वही के वही अपने हाथों की अंगूठियां और पैसे देकर सदस्यों ने उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिया।
2: उसी समय कैंप ने निषेधाज्ञा का आदेश दिखाकर सबसे वचन मांगा कि कोई भी प्रतिनिधि सभा समाप्त होने पर वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। बीते कल निर्ममता से लाठीचार्ज करने वाले कैंप को सभा स्थल पर देखकर उपस्थित जन समुदाय और भी क्रुद्ध हो गया। कैंप सुरेंद्रनाथ बनर्जी के पास गया और बोला,
3: लिसन, आई विल बी सेफ हियर विथ यू। Being a government officer, I have to obey the government orders.
2: सरकारी अफसर होने के नाते मुझे सरकारी हुक्म मानना पड़ता है। सभा समाप्त होने पर यहाँ जुटे लोग वंदे मातरम के नारे नहीं लगाएंगे, ऐसा आश्वासन आप दें, तभी मैं ये सभा आगे चलने दूंगा, अन्यथा अभी ही इसी समय सभा बंद करनी पड़ेगी।
0: सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित सभी नेताओं ने ऐसी सहमति देने में असमर्थता जताई। कैंप ने सभाबंदी का आदेश दिया। उपस्थित जनसमुदाय सभाबंदी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लोगों को समझाया,
4: कल बहुत बड़ा रक्तपात हुआ है, आज फिर उसकी पुनरावृत्ति किस लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन का हमारा उद्देश्य सफल हो गया है।
0: अध्यक्ष ने परिस्थिति पर विचार किया। अधिक विरोध से स्थिति बिगाड़ने की बजाय ये अधिवेशन सर्वसम्मति से बर्खास्त कर दिया, परंतु वंदे मातरम के संबंध में कोई भी वचन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। क्रोधित कार्यकर्ता सड़क पर आ गए और भी जोर से वंदे मातरम का घोष करते रहे। खाली मंडप में रह गए केवल सशस्त्र सैनिक। अधिवेशन समाप्त होने पर बाहर निकल रहे लोगों से बिपिन चंद्र पाल ने कहा,
4: आज भले ही निषेधाज्ञा लागू की गई हो, फिर भी क्रांति की आग यहाँ भड़क चुकी है। आप सब अपने अपने गांव जाकर सभाओं का आयोजन करें और क्रांति की आग सब और फैला दें। आज का दिन शोक संतप्त होने का नहीं, बल्कि अत्यंत आनंद का दिन है।
2: अधिवेशन समाप्त कर घर जाने वाले प्रतिनिधियों का हर स्टेशन पर वंदे मातरम की घोषणाओं के साथ जोरदार स्वागत हो रहा था। बरिसाल से लौटते समय रेल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भगिनी निवेदिता ने कहा,
5: आपको जेल में बंद करने का सरकार का षड्यंत्र आपने विफल कर दिया है। अपने ही बुने जाल में ब्रिटिश सरकार फंस गई है। नैतिक विजय तो हमारी ही हुई है।
2: भगिनी निवेदिता की यह बात आगे सच साबित हुई।

कृपा सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

मातरम एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 32वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार ममता सिंह, तकनीकी सहयोग किरण बंग, समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: ही दम आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: मशीनों का नगर, भारत की भीड़ से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम।
1: आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत, हम बोल रहे हैं विविध भारती से। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने।

0: वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगे और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
2: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं। दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों

0: महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजी 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगवेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपए के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपए और प्रतिमाह 24 लाख रुपए तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया।

0: पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए यह सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ है जया भारती।
2: वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए अब सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

धरती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। तीसरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मुकेश की आवाज।

मुकेश की आवाज में ये था तीसरी कसम फिल्म का गाना। रचना थी शैलेंद्र की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। आइए अब सुने रोशन की बनाई तर्ज पर लता मंगेशकर का गाया गाना। रचना है साहिल लुधियानवी की फिल्म बहू बेगम।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बहार खिली गनी।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिल दिया दर्द लिया।

दिल दिया धर दिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। लिखा था इसे शकील बदायूनी ने, धुन बनाई थी नौशाद ने। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदा।

आप सुन रहे थे ये गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। राजा मेहदी अली खां के बोलते फिल्म थी वो कौन थी। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: प्रकृति नियमबद्ध है, जैसे सूर्योदय होना फिर शाम हो जाना, रात को चांद की चांदनी बिखेरना और भोर की पहली किरण के पहले चुपके से ओझल हो जाना। इसी तरह मौसम का भी चक्र है, जैसे गर्मी की तपिश के बाद रिमझिम बरसात, फिर गुलाबी ठंड और बाद में बसंत की बहार। इसी तरह जीवन के भी अपने चक्र हैं। इन्हीं में से बेहद मासूम और खूबसूरत नियम है छुट्टियों के बाद बच्चों का फिर से स्कूल लौटना। अब कई घरों में खेलकूद की जगह धीरे धीरे स्कूल जाने की तैयारियां अपनी जगह बना रही है। तो बस आज अपनी सहेलियों से इन्हीं बातों को, इन्हीं यादों को याद करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। पहली कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: सरिता कुमारी।
0: सरिता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: दीदी, अयोध्या रसूलाबाद।
0: अरे वाह, अयोध्या से, अयोध्या नगरी से आप बात कर रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है जीवन में, क्या करती हैं आप?
1: क्या दीदी, बस घर में रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अच्छा। आप बताइए, आप ठीक हो?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं और हम तो हमेशा ही उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाली जितनी हमारी सखियां हैं सब हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे।
1: इतना आज बहुत खुश हूँ, इतना दिन के बाद कॉल लगा, इतना दिन से तैयारी कर रही थी।
0: जी हमें पता है सरिता जी, बहुत कोशिश करने के बाद फिर जब फोन लगता है तो उसकी खुशी और उसका आनंद क्या होता है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि आपसे हमारी बात हो रही है। तो बताइए आप क्या सुनना चाहेंगी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: दीदी दी, प्रेम रतन धन पायो।
0: प्रेम रतन धन पायो फिल्म का कौन सा गीत?
1: वही प्रेम रतन धन पायो गाना।
0: जी
1: है।
0: जी, तो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाते हैं। तो चलिए विविध भारती की ओर से सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: जी मैं चांदनी जी बोल रही हूँ।
0: चांदनी जी
1: छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। हाँ
0: चांदनी जी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, क्या बात है। चांदनी जी क्या करती हैं आप? कुछ काम करती हैं, गृहिणी हैं, क्या करती हैं? अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मैं हाउस वाइफ हूँ।
0: जी क्या बात है।
1: घर को ही देखती हूँ, बस घर में ही रहती हूँ और सारा दिन रेडियो सुनती हूँ। मेरा रेडियो सुनते सुनते सारा दिन पूरा काम होता है।
0: देखिए रेडियो से जो प्रेम है, विविध भारती से जो प्रेम है, इसी वजह से तो हम आपस में जुड़े हुए हैं, है ना चांदनी जी। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके कितने हैं?
1: जी मेरे 3 बच्चे हैं मैम।
0: अच्छा
1: तो बेटे हैं मैम, एक लड़की है।
0: अच्छा क्या बात है।
1: जी मेरी एक जो बेटी है वो टीचर है। दोनों बच्चे मतलब एक पापा के साथ मतलब शॉप पे रहते हैं और एक बैंक में है बेटा।
0: अच्छा तो बड़े बच्चे हैं। तो हम आपको यादों की गलियारे में ले जाना चाहते हैं, जहाँ जब ये छोटे हुआ करते थे आपके बच्चे, स्कूल जाने की जब तैयारियां होने लगती थी तो घर में क्या माहौल रहता था? किताबें लाना, वो स्कूल के लिए लाइन में खड़े होना, फिर जब किताबें कॉपियां लेकर आके घर में उनके कवर चढ़ाना, आपकी क्या यादें हैं उसको लेके?
1: बच्चे जब आते थे कॉपी किताब लेके, पापा जब लेके आते थे उनसे, कहते थे मम्मी कवर चढ़ा के दो। बहुत उसको इतना तंग करते थे बच्चा। हालांकि तो हमारा ही काम बनता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं मैम
0: जी,
1: तो उनके ऊपर कवर चढ़ाते थे। खाकी चावल कवर चढ़ाने के बाद जो खाकी कवर आते थे ना पहले, खाकी कवर
0: जी
1: उसको चढ़ाते थे। उसके बाद जो चिट बोलते हैं वो चिट लगाते थे, फिर नाम लिखते थे। उसके बाद फिर वो बोलते थे मम्मी उसके ऊपर पन्नी वाला कवर लगाइए। वो लड़कों ने हमारा पन्नी कवर लगाया, मम्मी हमको भी लगा के दीजिए। तो वो भी हम करते देते थे उनको, ताकि बच्चों को लगे कि नहीं हम उनकी कॉपी सही रहे। और उनको ये भी सिखाते थे कि बच्ची अपने हर चीज को संभाल कर अच्छे से रखना है।
0: बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें चांदनी जी। आज बताइए आप कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ फिल्म का नाम है मैम रोटी कपड़ा और मकान। गाने के बोल है मैं ना भूलूंगी।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, ये बताइए आज इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम धन्नो जायसवाल बोल रहे हैं झांसी से। हाँ
0: झांसी से धन्नो जायसवाल।
1: झांसी।
0: धन्नो जी, मैं पूछना चाहती हूँ, आपके कितने बच्चे हैं?
1: हमारे हमारे
0: जी
1: 3 बच्चे हैं।
0: जी तो बड़े हो गए हैं या छोटे हैं?
1: हाँ, बड़े हो रहे हैं। एक तो बड़ा है, उसकी शादी कर दिया है, बहू भी है, और दो लड़कियां हैं, वो दिल्ली में हैं, उनकी शादी कर दिया।
0: अच्छा जी, जब बच्चे छोटे थे तो स्कूल जाते थे, तो स्कूल के लिए उनकी कॉपी किताबें आती थी, उस पे कवर चढ़ाना या फिर उनके झगड़े होते
1: सब
0: थे,
1: हम ही करते थे मैडम, सब हम करते थे।
0: तो इसी तरह से आपने समझा बुझा के उनका पालन पोषण किया है और आज आपके देखिए बच्चे तीनों खूब अच्छी जगह पर हैं। इसी बात पे मुझे बताइए, आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम गीत सुनना चाहते हैं मैडम। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बैठाए दिल को बेचैन हो जाती है, जब होता है, जब किसी से प्यार होता है।
0: क्या बात है, तुम बिन फिल्म का। चलिए
1: हाँ,
0: आप ही
1: तुम बिन
0: जी, तो तुम बिन फिल्म का आप ही की पसंद का ये गीत विविध भारती की ओर से आपके लिए।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में अंतराल हुआ खत्म और सुनते हैं किसकी घंटी आज फिर बजी है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किन से बात हो रही है हमारी?
1: आपकी मधु झुंझुनवाला जयपुर से बोल रही हूँ मैं।
0: जयपुर से मधु झुंझुनवाला जी, जी बताइए मधु जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ
0: जी।
1: बताइए
0: जी, हम लोग भी सब बिल्कुल अच्छे हैं। और ये बताइए, क्या करती हैं आप जीवन में?
1: ऐसे तो साधारण रहनी हूँ, पर अपने भावों को कविताओं का रूप देती हूँ, लिखती रहती हूँ।
0: भाई देखिए, गृहिणी होना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, वो असाधारण काम है, हम सब जानते हैं। तो मधु जी बताइए, आप क्या लिखती हैं, किस तरह का लेखन है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: मैं वास्तव में भावों को ही, अपने भावों को ही शब्द रूप देती
0: हूँ। जी, तो आपकी कोई रचना आप हमें सुनाएंगी अपनी सभी सखियों के लिए?
1: हाँ
0: जी, सुनाइए।
1: अपनी रचना सुनाती हूँ
0: जी।
1: नमनाक हो चली थी पुरवाई, नमनाक हो चली थी पुरवाई, पतवार जिंदगी की जंग खाई, कर दिया तेरे हवाले खुदा को, देखी जब पारावार की गहराई, जब से तुमको ना खुदा माना है, कुत्ते हुआ ये दिल बेगाना है, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन थे, बैठे है सफीने पर तेरे यकीन थे, मुका पे ढूंढती नहीं ठिकाना है। कविता है,
0: बहुत सुंदर कविता। आप कहती हैं साधारण महिला है, कहाँ इतने असाधारण आप अपनी कला को लिए हैं और शब्दों में अपने भावों को उतार पा रही हैं, तो ये भी तो अपने आप में अद्वितीय एक गुण है ना। बताइए आज कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सरस्वती चंद्र का
0: जी, बेहद सुंदर गीत है। तो विविध भारती की ओर से आपको सुनाते हैं आप ही की पसंद का ये।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, मैं वैजयंती खेल सुतार बात कर रही हूँ, बीड जिले से। हाँ
0: बीड जिले से वैजयंती सुतार। वैजयंती जी, कैसा चल रहा है जीवन, क्या चल रहा है इन दिनों में, बताइए।
1: अच्छा चल रहा है।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं कुछ नहीं, मैं घर में हूँ, मैं कुछ हूँ। और ये इस समय मेरे मिस्टर की दुकान पे बैठी हूँ, फाटक चौक में।
0: जी
1: हाँ, उनकी रसवंती शॉप है, रसवंती
0: जी,
1: गन्ने की रस जूस सेंटर। हाँ
0: अच्छा, गन्ने का जूस सेंटर। तो इन
1: हाँ
0: दिनों तो बहुत आप लोग एकदम व्यस्त रहते होंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: है। और
1: बहुत बहुत व्यस्त रहते हैं और काम भी बहुत बढ़ जाता है ना मैम।
0: जी बिल्कुल, तो आप
1: हाँ
0: अपने पति का हाथ बटा रही हैं इन दिनों।
1: हाँ उनका हाल तो क्या बताने का, वो हैंडीकैप्ट होके भी बहुत काम करते हैं, स्ट्रगल 7 बजे से शाम 8 बजे तक तो स्ट्रगल चालू ही रहता है मैम।
0: हम उसे स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, ये जीवन यापन का साधन है ना। मेहनत तो सभी लोग करते
1: हाँ
0: हैं, सभी
1: यस
0: का एक
1: हाँ
0: अपना
1: हाँ
0: अपना
1: यस
0: अलग अलग व्यापार है, काम का तरीका है। मेहनत करते हैं तो उसका रंग भी तो बहुत खूबसूरत निकल के आता है ना।
1: बहुत बहुत बहुत। हाँ
0: जी, तो घर में आपके बच्चे भी हैं?
1: हाँ मेरे को 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई है, 2 बेटे हैं, वो भी पढ़ते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर है। और मुझे जो है वो काम भी कर रहे थे यहाँ पे।
0: जी जी तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब बच्चे आपके छोटे थे तो गर्मी की छुट्टी के बाद वापस स्कूल शुरू होते हैं है ना, तो उन दिनों में बच्चों की कॉपी किताबें लेकर आना, फिर उस पे कवर चढ़ाना, तो ये सब, ये जो बातें हैं, ये सब इसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे हुआ करता था आपके घर में?
1: बहुत बहुत अच्छे स्ट्रगल, और छुट्टों में भी कैसा करते थे, पढ़ाई नहीं थी ध्यान रहते थे उनके। फिर अब स्कूल शुरू होने ही वाला है तो फिर ये बुक लो, पेंसिल लो, कुछ कुछ बॉक्सेस लो, पेंसिल लो, राइटिंग के, ड्राइंग के, इसमें व्यस्त रहते थे। जब स्कूल होती थी शुरू तो फिर कवर लगाने का, मैं बुक लेते तो मैं कवर लगा के देती थी उनको, भी वैसे कॉपी कर देते।
0: जी बिल्कुल, और वो होता है ना कि नई नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, आपके बच्चे भी ऐसे
1: ओ बहुत बहुत
0: करते थे?
1: हाँ ये शाम भी कर दी बनाओ, उधर की पत्ता इधर इधर का उधर, ऐसा करके हम
0: हाँ
1: उसको ऐसे कुछ खेल बनाते थे।
0: हाँ ये बात तो है। तो देखिए ना, बच्चों के साथ साथ आपको अपना भी जो वक्त है वो भी याद आ गया है ना।
1: बहुत बहुत मैम,
0: जी, आपसे बात करके हमें
1: बहुत बहुत।
0: बहुत अच्छा लगा। वैजयंती जी, आज
1: हाँ
0: बताइए आप कौन सा गीत
1: जिंदगी
0: सुनना चाहती हैं?
1: हर कदम एक नई जंग है, उनको पसंद है।
0: अच्छा, तो आपके पति को पसंद है इसलिए आप सुनना चाहती हैं।
1: बहुत पसंद है यस।
0: तो चलिए सुनते हैं आप दोनों की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद देखते हैं आज किस सखी से हमारी बातचीत होगी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम अनीता विजयवर्गीय है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं अनीता जी आप?
1: जी मैं जयपुर में रहती हूँ।
0: जी क्या बात है, जयपुर शहर यानी गुलाबी शहर हमारे देश का है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: जी तो अनीता जी क्या करती हैं आप?
1: जी मैं बेसिकली गृहिणी हूँ और मुझे लिखने का शौक है।
0: क्या बात है।
1: कविताएं लिखना पसंद करती हूँ, तो मैं जीवन पे और सभी मनोभावों पे मेरी कविताएं होती हैं।
0: ये तो बहुत ही सुंदर बात है। घर के सब कामों के बीच में इन सब के लिए वक्त निकाल पाती हैं आप? और ये भी बताइएगा कि बचपन से शौक था, किस तरह से आपने इसके लिए अपने आप को कुछ शिक्षित किया या मन में कुछ भाव आते थे, कुछ शब्द आते थे और फिर आपने उनको पन्नों पे उकेरा?
1: जी मुझे लगता है कि कोई भी लेखक एक जन्म से ही वो लेखक होता है। बाद में उसको किस समय ये उजागर होता है कि वो एक लेखक है। वो कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब वो कुछ अपनी गहरे मनोभाव, उसकी संवेदनाएं, कभी ऐसे जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो लगता है कि अब इन्हें पन्नों पर उतारना चाहिए, तभी वो एक लेखक बन जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग लेटर्स लिखती थी
0: जी।
1: तो सभी को बहुत पसंद आते थे। बेसिकली वैसे लिखा नहीं कुछ, फिर बाद में धीरे धीरे जाके मेरी बेटी के स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक कविता लिखनी थी, तब पहली बार मैंने कविता लिखी और उसके बाद मैं लिखती चली गई।
0: जी हम आपसे कविता तो सुनेंगे ही, ये भी बताइए कि आप सिर्फ अपने तक ही है ये कविता या आप कहीं पर मंचन करती हैं, कहीं जाती हैं?
1: जी जी मैं मंचन भी करती हूँ, मैं कई काव्य मंचों से जुड़ी रहती हूँ और उनके प्रोग्राम्स में जाती रहती हूँ।
0: तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अनीता जी आपकी कोई रचना हमें अगर आप सुना सके तो जरूर सुनाइए।
1: जी बिल्कुल, मुझे एक कविता बेहद पसंद है तो मैं वो आपको सुनाना चाहूंगी।
0: जी
1: इसका शीर्षक है आशियाना।
0: आशियाना शीर्षक।
1: जी ऐ मेरे हमसफर, एक ऐसा आशियाना बनाना जैसे पूरा हो कोई ख्वाब सुहाना, तुम्हारे कांधे से मजबूत उसकी छत हो छाया हो, मेरे इस जीवन पर बस तेरा ही साया हो, प्यार की सीमेंट में आंखों की थोड़ी नमी घोलना, ईंट दर ईंट रिश्तों की पुख्ता दीवार जोड़ना, तुम्हारे बड़े दिल की तरह हो एक बड़ा सा कमरा, हर शब हो सहर बस प्यार का ही हो पहरा, एक खुली सी बालकनी हो और हो तुम्हारी गलबैयों का झूला, महक हो रिश्तों की और सुलगता रहे रिश्तों का सांझा चूल्हा, ऐ मेरे हम सफर एक ऐसा आशियाना बनाना, दरीचों पर हया का पर्दा रहे, सूरज की रोशनी से आंगन महका करें, मुमकिन आशाओं से खुली छत हो, हर आसमां पर सितारों की गश्त हो, ऐ मेरे हमसफर एक ऐसा आशियाना बनाना, मन करता है हमारे आशियाने की बगिया में खो जाऊं, तेरे कांधे पर सर रखूं और सो जाऊं, चाहे जैसे भी हो हालात, हो सुकून दिल में और छूटे ना अपना साथ। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर अनीता जी। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही आशियाना हर एक के जीवन में हो और हम आपसे और भी बहुत सारी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन अगली किसी बार अगले कोई कॉल में हम आपसे आपकी और कविताएं सुनेंगे। आज लेकिन बताइए आप आपके पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैंने ये कविता आशियाना पर सुनाई तो आप मुझे हर फिल्म का आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है वो सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, चलिए सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो मैडम,
0: जी, किनसे बात हो रही है हमारी?
1: साधना गजवे बोल रही हूँ मैडम। मैं नागपुर से।
0: नागपुर से साधना जी। साधना जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैडम, आप लोग कैसे हैं?
0: बिल्कुल, हम सब अच्छे हैं। और इन दिनों क्या चल रहा है जीवन में अभी?
1: गर्मी के दिन है, विविध भारती है साथ में
0: जी,
1: जाने का मौज लेते हैं, दिन भर विविध भारती के साथ रहते हैं
0: जी। तो आप घर पर ही रहती हैं या कुछ काम, किसी तरह का कोई काम करती हैं?
1: काम तो मतलब मैडम, मैं ऑर्डर लेके पापड़ अचार बना देती लोगों को, और घर में रहती हूँ, गृहिणी हूँ घर की
0: जी। मतलब आप अचार और पापड़ बनाने का भी काम
1: पापड़
0: करती हैं?
1: ऑर्डर दे, हाँ ऑर्डर दे बनाते
0: जी। तो ऑर्डर्स कैसे मिलते हैं आपको, किस तरीके से लेते हैं?
1: किलो से, घर के जैसे सब लोग जॉब पे रहते हैं ना, यहाँ लता मंगेशकर हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तो यहाँ सब हॉस्पिटल के लोग रहते हैं।
0: अच्छा,
1: जॉब वाले तो हम लोग ऑर्डर देते हैं तो उनका बना देते हैं।
0: क्या बात है। तो इस साल कितना ऑर्डर मिला और मतलब अच्छी आपकी कमाई हो गई?
1: अभी 10 किलो का बनाई थी मैंने।
0: तो बहुत अच्छी बात है। तो आप घर का भी काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं, उसके अलावा इतने सारे आप ऑर्डर्स लेती हैं, और अचार और पापड़ बनाना ये हर एक की बस की बात नहीं है, इसके लिए भी कला होनी चाहिए। तो बताइए साधना जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: देवा श्री गणेश, ये गाना सुनना है।
0: बिल्कुल, आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: डॉक्टर श्रुति गुप्ता।
0: डॉक्टर श्रुति गुप्ता, कहाँ से बात कर रही हैं हम डॉक्टर श्रुति?
1: कोटपुतली जयपुर राजस्थान से। ये
0: कोटपुतली, ये तो नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कैसा है ये?
1: हाँ जी, ये छोटा टाउन है, जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, वहां पे एक छोटा टाउन है कोटपुतली, तो मैं
0: जी
1: वहीं पर रहती हूँ।
0: अच्छा, तो आपने बताया आप डॉक्टर हैं, तो किस विधा में आपकी स्पेशलाइजेशन है बताएंगी आप?
1: मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ।
0: आयुर्वेदा डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप प्रैक्टिस कर रही हैं, करती हैं, कोटपुतली में करती हैं, किस तरह से हैं बताइए, आपके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ जी, मैं प्रैक्टिस करती थी पहले, बट अभी रिसेंटली लोकेट हुई हूँ, तो अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट थोड़े टाइम बाद वापस प्रैक्टिस करने लग जाऊंगी।
0: अच्छा, तो यानी आप अभी यहाँ पे, आपका ट्रांसफर हुआ है किस तरह से, मतलब आप क्या हुआ है?
1: हाँ जी, एक्चुअली रिसेंटली मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे अल्ट्राटेक में जॉब करते हैं,
0: अरे वाह,
1: तो इसलिए मैं यहाँ पे रिलोकेट हुई हूँ।
0: तो अभी अभी शादी हुई है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर श्रुति। और अभी अभी आपका ये वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है ना?
1: जी, बिल्कुल।
0: तो कैसा लग रहा है अब यहाँ पर नए शहर में हैं? पहले आप कहाँ रहती थी, मतलब मायका कहाँ का है आपका?
1: मेरा मायका कोटा राजस्थान का है।
0: अच्छा, तो प्रैक्टिस अब यहाँ पर नहीं हो पा रही है या आप अभी कर नहीं रही हैं?
1: नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग टाइम फॉर मैरिज, फॉर सेटलिंग
0: तो ससुराल वाले अलाउ करेंगे ना आपको, मतलब काम करने के लिए, इस तरह से कोई रोक टोक तो नहीं है?
1: इन। नहीं, मेरे ससुराल वाले दे आर वेरी फॉरवर्ड माइंडेड, तो वहां पे कोई परेशानी नहीं है
0: बहुत अच्छी बात है।
1: इसलिए।
0: तो पेशेंट को किस तरह से आप, शुरुआती आपका जो उपचार है वो कैसे होता है?
1: हाँ जी, एक्चुअली शुरुआती उपचार में हम लोग आयुर्वेदा में सबसे पहले पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं, हम पेशेंट से पूछते हैं आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, किस समय क्या काम कर रहे हैं उनका, और पहले की भी कोई बीमारी की अगर उनको हिस्ट्री रही हो, उनके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी रही हो, तो हम ये पहले ये सब कुछ जानते हैं। उसके बाद आपने सुना भी होगा कि आयुर्वेद उपचार जड़ से होता है, ऐसा सुना
0: जी
1: होगा, तो
0: बिल्कुल जी
1: इसीलिए जड़ से उपचार करके हम सबसे पहले वजह पे जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसी को भी कोई बीमारी हुई तो आखिर वो क्यों हुई है। फिर जैसे ही हमें वो पता चलता है, धीरे धीरे सवाल से पेशेंट कुछ बताता है, तो फिर उसके बाद में हम उसके इलाज पे जाते हैं।
0: जी तो डॉक्टर श्रुति, हमने सुना है ये उपचार में थोड़ा वक्त लगता है आयुर्वेदा में, तो क्या ये बात सही है?
1: ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपचार में वक्त लगे, वो रोगी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। अगर
0: जी
1: बीमारी बहुत पुरानी होगी तो उसको सही करने में थोड़ा समय लगेगा, अगर वो हमारी दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो समय लगेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, बीमारी भी नहीं है, वो सारी बातें भी जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, खाना पीना ये सब वो मानते हैं, बहुत जल्दी भी उपचार हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, तो आपकी ये जो नई विवाहिता जीवन है उसके लिए, और अब जब आप वापस से अपना काम शुरू करेंगे उसके लिए, दोनों के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं।
1: बहुत धन्यवाद आपका।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: आज मैं सौदागर मूवी का तेरा मेरा साथ रहेगी सुनना चाहती हूँ।
0: तो चलिए आप ही की पसंद का सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते, ये तो बताइए नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता उइके।
0: क्या बात है सुनीता जी, तो बताइए कैसी हैं आप और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं सिकंदरा वाराणसी जिला लगा से बोल रही थी दीदी
0: जी। सिकंदरा से? तो ये इसके आसपास कौन सा बड़ा शहर है?
1: ये पास में वाराणसी है। अच्छा। और बालाघाट है
0: जी, बालाघाट के पास में। तो क्या करती हैं आप सुनीता जी?
1: मैं गृहिणी दीदी।
0: गृहिणी है?
1: घर का काम, खेती में काम करती हूँ।
0: तो आप तो खेती में भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, यानी कि दिन भर आपका व्यस्त ही निकलता होगा।
1: हाँ दीदी, आदमी
0: जी। तो सुनीता जी, हमें ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: देवर है दीदी, देवरानी है, मम्मी पापा है, पति है, दो बच्चे हैं
0: जी।
1: घर के एक है, एक मेरा है।
0: हाँ। अच्छा, तो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं या बड़े हो चुके हैं अब?
1: नहीं नहीं छोटे दीदी, एक है अभी 9 साल का, अभी मतलब 14 तारीख को हो जाएगा 4 साल का बर्थडे है उनका।
0: जी, तो ये भी मुझे बताइए, अब तो बस कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले होंगे?
1: शुरू होने वाले हैं दीदी, अभी चालू नहीं हुआ है।
0: ये बताइए कि उनकी कॉपी किताबें जब आ जाएंगी तो सब कवर वगैरह चढ़ाने का काम आप ही का रहता होगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे हैं अभी, है ना?
1: हाँ दीदी, हाँ मैं करती हूँ ना, फिर उनकी मम्मी को भी कभी मतलब ड्यूटी करते हैं पूरा दिन।
0: अच्छा।
1: तो हाँ उनको भी कभी कभी समय ही मिल जाता है तो वो भी कर देते हैं, लेकिन कवर चढ़ाना यानी इसका काम नहीं कर देती।
0: जी जी, तो घर में बस अभी कुछ ही दिनों में ये सारा माहौल होने ही वाला है ना?
1: हाँ
0: जी,
1: अभी तो बस 2 महीने से मस्ती कर दिए बच्चे, अब स्कूल चालू नहीं होने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, यही तो बातें हैं ना, यही सब जब बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए यादें बन जाएंगी कि किस तरह से बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मजे करते थे। सुनीता जी, आपसे बातें करके हमें बहुत मजा आया, आप ये बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे कभी कभी फिल्म का गीत सुनना था, मेरे घर आइए।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: मैं अनिमा जी मंसूरी बोल रही हूँ, सालगाना का इंदौर से मैडम
0: जी। ये
1: जी।
0: बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक नारी दो रूप का सुनना चाहती हूँ, गाने के बोले दिल का सुनना था तारा ना ढूंढेगा, मोहम्मद रफी साहब की आवाज है
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

क्यों आज हमने कुछ सुंदर कविताएं सुनी, बच्चों की वो स्कूल की छुट्टियों के बाद स्कूल वापसी की यादें ताजा की और कुछ हुई मन की बातें। आप भी शेयर कर सकती हैं अपनी दिल की जुबान। हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए आप नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02240024662, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। अन्य नंबर है हिंदी में 02228670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का एसटीडी कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज की हेलो सहेली में तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारे इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन में सहयोग दिया नम्रता टिकोरी ने, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कभी बेख्याल हो कहीं किसी
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए अरगवान रबही की लिखी कहानी अंजलि। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। दोपहर की तेज धूप से बचने के लिए अरविंद विकास नगर की मेन रोड की जगह गलियों से होकर अपनी दुकान पहुंचता था। लखनऊ के नए इलाकों की चौड़ी सड़कों में जून की गर्मी और मुश्किल महसूस होती थी, फिर भी इन मोहल्लों में बने छोटे बड़े पार्क और पार्क के किनारे लगे इक्का दुक्का पेड़ भी किसी राहत की तरह हैं। अरविंद इन्हीं इक्का दुक्का पेड़ों की वजह से गलियों वाले रास्ते से अपनी परचून की दुकान पर पहुंचता था। सुबह से लेकर 2 बजे तक उसके भाई दुकान पर बैठते थे और उसके बाद वो शाम के 5 बजे तक दुकान संभालता, फिर भाई आकर दुकान संभालते। 2 बजे से ठीक पहले वो तेज धूप से बचता बचाता सेक्टर 4 की अपनी दुकान पर पहुंचता था और इसी रास्ते वो शाम होने से ठीक पहले पहुंचता था। दोपहर में उसे पूरी गली खाली मिलती, कहीं कोई इंसान नजर ही नहीं आता, लेकिन जब वो शाम होने से पहले लौटता तो गली में हल्की चहल पहल दिखने लगती। कोई अपनी कार बाहर निकाल रहा होता, कोई दूध का पैकेट लेकर घर की ओर जा रहा होता, तो कोई अपने दफ्तर से वापस आ रहा होता। लोग इक्का दुक्का ही दिखते थे। रोज एक घर के बाहर 60 साल का एक आदमी अपना बड़ा सा गेट खोलकर पानी की बौछार लगा रहा होता। बौछार लगाकर फ्री होता तो कई बार यूं ही पाइप छोड़ देता और पानी अपनी रफ्तार से बहता रहता। एक रोज अरविंद के भाई दुकान पर देर से आए और उसकी छुट्टी 6 बजे हुई। वो दुकान से जब घर की तरफ बढ़ा तो उसे उस गली में पहले से कहीं ज्यादा चहल पहल दिखी। पानी बहाने वाले अंकल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर 60 साल के अंकल की जगह उनके घर के बगल वाले घर की बालकनी में खड़ी 2 लड़कियों पर पड़ी। लंबे बालों में स्लीवलेस सफेद टॉप और काले शॉर्ट्स पहने लड़की अपने दाएं पांव को रेलिंग पर रखकर एक लड़की से बात कर रही थी। मेहंदी रंग का सूट पहने दूसरी लड़की की सिर्फ पीठ ही नजर आ रही थी और हाँ, पीठ पर ठहरे उसके काले घने बाल भी। दूर से देखने पर टॉप और शॉर्ट पहनी हुई लड़की खूबसूरत लग रही थी। अरविंद ने एक नजर उस लड़की को देखा, लेकिन उसे दोबारा देखना ठीक नहीं लगा। हालांकि आज पहली बार गली कुछ ज्यादा अच्छी जरूर लगने लगी थी।

कुछ दिन बाद फिर अरविंद दुकान से लेट में छूटा और इस बार उसकी नजर दूसरी लड़की पर पड़ी। नीली पेंसिल जीन्स और छोटे छोटे फूलों के प्रिंट से सजा फ्लोरल टॉप पहने लंबे बालों वाली उस लड़की के गाल सुर्ख थे, आंखें बड़ी बड़ी, माथा चौड़ा और कद उस दूसरी लड़की के मुकाबले लंबा। अरविंद की नजर उस खूबसूरत नौजवान लड़की पर ठहरी गई थी कि उसे बगल में खड़ी दूसरी लड़की दिखाई दी। ये वही लड़की थी जिसे उसने एक और दिन देखा था। आज उसने मैली सी लाल टी शर्ट और सफेद शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसके बाल बिखरे से थे और चेहरा सोया हुआ सा लग रहा था। अरविंद को ध्यान आया कि उसे इस तरह बहुत देर ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए और उसने नजर रास्ते की ओर कर ली, लेकिन अगले ही पल फिर नजर उसकी बालकनी की ओर उठ गई। लेकिन इस बार उसकी नजर पकड़ी गई, दोनों लड़कियों ने उसे देख लिया और अरविंद ने झेपती हुई नजर दूसरी ओर की। लड़कियां बालकनी से गायब हो गई, उनकी तरह तेजी से तो नहीं लेकिन अपनी गति से शाम भी नजर से ओझल हो गई। एक नई सुबह, कमरे की खिड़कियां चमक रही थी लेकिन उनके किनारों पर धूल अपना घर बना रही थी। तेज धूप खिड़की के शीशों को पार करके बेड पर पड़ रही थी। खिड़की से सटाकर रखी मेज पर लैपटॉप, हेडफोन, A4 साइज के कुछ बिखरे पन्ने, उल्टी रखी एक किताब और मोटी लेंस वाला नजर का चश्मा रखा था। किनारे पर ही दूसरी छोटी मेज पर एक सफेद कवर की डायरी में पेन नजर आ रहा था और एक छोटा सा पेन स्टैंड भी वहीं पास में रखा था जिसमें 2-3 पेंसिलें और काले नीले डॉट पेन रखे थे। इसके अलावा एक फोटो फ्रेम किसी 35 साल की महिला के पुरानी फोटो से सजा हुआ था। बाथरूम का दरवाजा आवाज के साथ बंद करते हुए काले शॉर्ट्स पहने अंजलि बाहर आई। उसने अपने लहराते बालों को दोनों हाथों से थाम कर बाएं हाथ से बेड पर पड़े रबर बैंड उठाकर बाल बांध लिए, कपड़े को एडजस्ट किया और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो दरवाजे के सामने ही घरेलू सहायिका नंदा दीदी उसे नाश्ते के लिए बुलाने खड़ी हैं। अंजलि पलटकर अपना चश्मा

उठाते हुए साफ सुथरी मेज की ओर बढ़ी और वहां रखी डायरी लेकर कुर्सी पर बैठ गई। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अंजलि की डायरी। 20 साल की अंजलि जाने कितने सालों से डायरी लिखती रही है और डायरी के कई पन्ने पलटते हुए अंजलि एक सादे पन्ने पर पहुंची और चश्मा लगाकर गुनगुनाती हुई डायरी पर कलम चलाने लगी।

अचानक डायरी छोड़कर अंजलि धड़धड़ाते हुए अपने कमरे से बाहर सीधी किचन की ओर बढ़ी और किचन में नाश्ता बना रही पल्लवी से लगभग बहस करने के अंदाज में कहा, बुआ मशीन अंदर नहीं रखवाई आपने? अरे हॉल में ठीक से रखी तो है, तुम्हारे कमरे में जगह भी कम है अंजलि। बहुत जगह है मेरे कमरे में, यही हॉल में सिल लो जो सिलना है। मैं हॉल में सिलाई नहीं कर सकती, आप प्लीज अंदर रखवा दो। वैसे तुम्हें क्या जरूरत है, जहाँ रखी है वहीं रहने दो, पल्लवी ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे मम्मा के लिए साड़ी तैयार करनी है, आपको बताया तो था मैंने। कोई जरूरत नहीं है, आप अंदर रखवाती हो या नहीं? नहीं। आपको क्या परेशानी है मेरी माँ से? तकरीबन 40% पार कर चुकी पल्लवी बुआ ने अंजलि की ओर हताशा से देखा और अपनी बात बदलते हुए कहा, तुम पहले नाश्ता करो। नहीं। अच्छा ऑफिस से आकर आज रखवा दूंगी, तुम नाश्ता तो करो। पक्का ना? हाँ पक्का। अपनी बात मान लिए जाने से खुश अंजलि नाश्ता करने बैठी और बुआ अपने कमरे में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। बुआ जल्दी से कपड़े बदलकर चेहरे पर हल्का सा पाउडर और थोड़ा परफ्यूम लगाकर बैग लटकाए कमरे से बाहर आई तो डाइनिंग टेबल में अंजलि नहीं बल्कि उसकी जूठी प्लेट और कप रखे मिले। बुआ ने उन्हें किचन में रखा और ऑफिस के लिए निकल गई। अंजलि ने बुआ की स्कूटी की आवाज सुनकर एक बार खिड़की से बाहर झांका और गेट से निकलती स्कूटी से नजर हटाकर मेज पर सजी महिला की फोटो देखने लगी, फिर उस फोटो को उठाकर मोहब्बत से चूम कर वापस रख दिया। भरी दोपहरी फन रिपब्लिक मॉल के किनारे चाय के ठेले के पास अंजलि की बुआ पल्लवी ने अपनी स्कूटी खड़ी की। नीम के पेड़ के पत्तों से छनकर धूप जमीन पर बिखर रही है। धूप से जरा सा हटकर छांव में बहुत से कर्मचारी खड़े थे और कुछ किसी चीज से टिके बैठे गप्पे लगा रहे थे। वहीं पल्लवी भी चाय का गिलास पकड़े पैंट शर्ट पहने एक आदमी के बगल में खड़ी हो गई। दोनों बातें करने लगे। तुम उसे बता क्यों नहीं देती? क्या बताऊं? यही कि उसकी माँ उसे बुला चुकी है। चाय का एक और घूंट लेकर गिलास ठेले पर रखते

हुए लगभग पल्लवी की ही उम्र का प्रेम बोला। प्रेम कई बार बताने की कोशिश की है लेकिन वो ये बात सुनना ही नहीं चाहती। पर बताना तो पड़ेगा ना। पता नहीं, उसके माथे पर आती लत को कान के पीछे करता हुआ प्रेम कहता है, तुम परेशान मत हो पल्लव। प्रेम, ठंडी आहें भरती हुई पल्लवी प्रेम के कंधे से सिर टिकाकर कहती है, फिर उसका हाथ थामते हुए अपना धड़कता दिल संभालते हुए रुककर अगले ही पल कहती है, देखो वो छोड़ो, तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो शादी भी तुमसे ही करूंगा। तुम जानते हो मेरी हालत, तुम मेरी बात तो कराओ अंजलि से, मैं उसे मना लूंगा। मुझे डर लगता है प्रेम। क्या डर लगता है, तुम अपने पापा मम्मी से बात नहीं करवा रही थी लेकिन वो तो एक ही बार में मान गए। हाँ पर अंजलि की बात और है, तुम मेरी बात तो करवाओ। प्रेम मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ कह दे। अरे कुछ नहीं कहेगी यार, मैं संभाल लूंगा। तभी मोबाइल पर नजर पड़ते ही पल्लवी चौंकी। वो फोन, लंच टाइम खत्म हो गया, चलो काम कर लें, ये सब तो होता ही रहेगा। पल्लवी ने चाय वाले को पैसे दिए और दोनों मॉल की ओर बढ़ गए। एक बार पल्लवी की नजर पीछे देखती है और वो प्रेम के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ जाती है। हालांकि पल्लवी भी जानती है कि वो प्रेम के बिना नहीं रह सकती लेकिन अंजलि की सोच कर वो ये बात कहने में सकुचाती।

आधी रात होने को है। स्ट्रीट लाइट जल रही है, लेकिन घरों में अब लगभग अंधेरा हो चुका है। चौकीदार की सीटी कहीं दूर बज रही है। कहीं पास में किसी घर में रेडियो पर मोहम्मद रफी गा रहे हैं हुई शाम, उनका ख्याल आ गया। बुआ की स्कूटी घर के बाहर ही खड़ी है। पूरे घर में अंधेरा है, लेकिन पल्लवी के कमरे में हल्की रोशनी है। वो अपने बेड के एक कोने में नींद दराज होकर फोन पर प्रेम से बात कर रही है। कल के लिए आलू की सब्जी और रोटी ले आऊंगी। कल कुछ मत लाना, कल सैटरडे है, जल्दी छुट्टी होगी, उसके बाद कहीं खाने चलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी बाय, क्योंकि 12 बज चुके हैं और सुबह जल्दी उठना होता है। हाँ बाय, लव यू।

से पहले अंजलि को देखने उसके कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंजलि के कमरे का दरवाजा तो लगा हुआ है लेकिन बंद नहीं है। पल्लवी कमरे के दरवाजे को हल्के हाथों से खोलती है कि नाइट बल्ब की रोशनी में सोती हुई अंजलि की मासूमियत से उसे दुलार आ जाता है। जैसे ही अंजलि को दुलारने के लिए उसके कंधे को हल्का सा उठाती है कि मम्मा, नींद में ही अंजलि के मुंह से निकलता है, यह शायद ये कोई ख्वाब है। पल्लवी उसके कंधे से अपना हाथ हटाने की कोशिश करती है कि अंजलि एक बार फिर मम्मा कहती है, और गहरी नींद में डूबी अंजलि पल्लवी को ही अपनी माँ समझकर उससे लिपट जाती है। पल्लवी का चेहरा न जाने क्यों खिल उठता है। नाइट बल्ब की हल्की रोशनी में अंजलि के साथ उसकी माँ की तस्वीर भी साफ नजर आ रही है। पल्लवी एक ठंडी आह भरती है और उसके मुंह से निकलता है, तुझे कैसे समझाऊं गुड़िया। सुबह 7 बजते ही धूप अंजलि के बिस्तर पर उसे जगाने पहुंच गई। माथे पर पड़ती हल्की धूप की गर्माहट से अंजलि की आंख खुली तो रोज की तरह सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर को ही देखा। अच्छी नींद का सुकून उसकी आंखों और उसके भरे भरे गालों वाले चेहरे पर दिख रहा था। अंगड़ाई लेते हुए जब कमरे में देखा तो बगल में सिलाई मशीन रखी दिखी। चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। दिन की शुरुआत जो अच्छी हो गई। आज खुश होकर मन से अंजलि जल्दी से बिस्तर छोड़ नहाकर तैयार होकर अपने आप ही हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर आकर पल्लवी बुआ के साथ नाश्ता करने लगी। दूध खत्म हो गया है, जब बाहर निकलना तो ले आना, बुआ नाश्ता करते हुए अंजलि से बोली। क्यों, दीदी नहीं आई? चाय का बड़ा कप हाथ में लेकर अंजलि ने सवाल किया। वो आज नहीं आई, फोन किया था, उसने बताया कि बीमार है। तो आपने अकेले सिलाई मशीन अंदर रखी है? हाँ, तो क्या हुआ? क्यों, मुझे उठा देती या मैं उठ जाती तब साथ में कर देते। तुम्हें और चाय चाहिए क्या? बुआ बात टालकर और चाय लेने किचन की ओर बढ़ गई। अंजलि चाय गर्म कर रही बुआ को एकटक देखती रही। 11 बजे अंजलि ने अलमारी से पैसे लिए और दूध लेने पास की दुकान पर पहुंच गई। लेकिन वहां दूध नहीं मिलने पर अलग अलग दुकानों में दूध पूछते पूछते अंजलि आखिर अरविंद की दुकान पहुंच गई। अंजलि तो उसे नहीं पहचान पाई लेकिन अरविंद ने उसे जरूर पहचान लिया। फिर भी ऐसे बात करता रहा जैसे उसने उसे कभी पहले देखा ही ना हो। दूध है? अंजलि ने खुद में खोए हुए ही पूछा। हाँ, कितना चाहिए? 1 लीटर। फ्रिज से दूध के पैकेट निकालकर अरविंद ने थैली में डालकर दे दिया। 100 रुपए का नोट अंजलि ने भी जेब से निकालकर उसके हाथ में थमा दिया और बाकी पैसे और दूध का पैकेट उठाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगी। लेकिन अरविंद की नजरों से उसे कुछ तो संदेह हुआ। अरविंद भी उसे जाते हुए देख ही रहा था कि गली में मुड़ने से पहले अंजलि ने पलट कर देखा और अरविंद की नजर से नजर मिलते ही झट से गली में मुड़ गई। उसका दिल जोरों का धड़क रहा था।

0: नाच रही है जवानियां जैसे तेरी तस्वीरें।
1: अगली शाम सफेद शॉर्ट्स और काला टॉप पहने अंजलि रोज की तरह अपनी बालकनी की रेलिंग पर पैर टिकाकर खड़ी थी कि गली के मोड़ से अरविंद आता दिखाई दिया। उसके घर के पास ही एक पेड़ के नीचे रुककर अरविंद अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा और अंजलि की नजरें भी गहनता से उसकी ओर ठहर गईं। अरे ये तो वो दुकान वाला लड़का है, वो मन ही मन कह उठती है और बीते दिन की बात सोचकर उसके चेहरे पर एक लाली छाने लगी। वहाँ अरविंद ने मोबाइल पर अपना गाना बदलकर एयरफोन लगाने के बाद जैसे ही नजरें उठाई कि सामने के घर की बालकनी पर खड़ी लड़की दिखी। अरविंद का ध्यान गाने से हटकर उस ओर हो गया। दोनों की नजरें मिली, अरविंद झिझका लेकिन अंजलि ने एक मीठी सी मुस्कान दी। अरविंद ने भी अंजलि की मुस्कान का जवाब मुस्कुराकर दिया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। अरविंद आगे बढ़ गया और अंजलि उसे जाते हुए देखती रही। अरविंद भी बार बार मुड़कर उसकी ओर देखता रहा। अरविंद के गली पार करने के साथ ही मानो अंजलि के दिल का एक हिस्सा भी उसके साथ गली के पार ही चला गया और उसकी नजरों के बारे में सोचकर ही अंजलि की धड़कन बढ़ गई और मन में एक अनोखी हलचल होने लगी। वो बालकनी से हटकर जल्दी से अपने कमरे में पहुंची और आईने के सामने बैठकर खुद को देखने लगी। अपने बालों को, होंठों को, आंखों को, अपने आप को देखते हुए उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और जैसे उसके चेहरे से चिपक ही गई। इससे पहले शायद कभी खुद को इतने गौर से उसने देखा ही नहीं था। अब एक सिलसिला सा बन गया। अंजलि रोज इंतजार करती और अरविंद जब आता तो हाय हेलो का एक सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ी। एक रोज अरविंद जब दुकान से वापस आने लगा तो बालकनी पर प्लास्टिक की कुर्सी तो दिखी लेकिन अंजलि कहीं नहीं दिख रही थी। मासूम अरविंद पेड़ के पास तक पहुंचा ही था कि पेड़ के बगल के पार्क से अंजलि बाहर आई और उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। अरविंद की धड़कन तेज हो गई। अंजलि उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने ही हिम्मत करके बात की। हेलो, हाय, मेरा नाम अंजलि है, मैं अरविंद। फिर कुछ पल दोनों खामोश रहे। आखिर क्या कहें, मैं आपको देखती हूँ, अंजलि ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए यूं ही कहा। जी, अरविंद ने लगभग चौंकते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है आप मुझे देखते हैं, सॉरी मेरा मतलब, अरविंद के जो मुंह में आया वो कहने लगा। नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अरविंद को सुकून आया, अंजलि उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों कुछ और पल वहीं खड़े रहे, फिर यकायक जैसे अरविंद को होश आया। अब मैं जाता हूँ, तभी अंजलि ने हिम्मत करके अपना दाया हाथ बढ़ाया और अरविंद ने लगभग कांपते हुए हाथों से हाथ मिलाया और अंजलि की ओर देखे बिना मुस्कुराकर अपनी राह चल पड़ा। इसके बाद से अंजलि और अरविंद एक दूसरे को देखने भर के लिए बेकरार रहने लगे। सारा दिन अंजलि ये सोचती कि वो क्या पहने जो अरविंद को भाए और ये भी कि आज अरविंद क्या पहन कर आएगा। मोबाइल नंबर का लेन देन भी हो चुका था और मोबाइल पर दोनों की झिझक दूर होने लगी थी, लेकिन आमने सामने अभी भी झिझक बाकी थी। एक दिन अरविंद ने घर से दूर एक कैफे में अंजलि को मिलने के लिए बुलाया। सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह पल्लवी बुआ सुबह के नाश्ते के बाद एक और बार चाय बनाने के लिए उठी और अंजलि से चाय पूछने के लिए जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला कि अंजलि को आईने के सामने खड़ा पाया। ये क्या कर रही हूँ, मेकअप? हाँ वो तो दिख रहा है, पर संडे को कहाँ जा रही हूँ? घूमने जा रही हूँ। किसके साथ? एक दोस्त के साथ जा रही हूँ। अच्छा, आपको कोई काम था क्या बुआ? नहीं कोई काम नहीं है, मैं तो बस पूछने आई थी कि चाय पियोगी। हाँ हाँ बना लो मेरी भी। बुआ के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अगले ही पल अंजलि का बेतरतीब मेकअप देखकर बुआ झिझकते हुए बोली, सुनो क्या, मैं कर दूँ मेकअप तुम्हारा? नहीं बुआ मैं कर लूंगी। अच्छा, बुआ ने ज्यादा जोर न देना ही उचित समझा, लेकिन अंजलि ने बुआ का मुंह देखा और बोली, गड़बड़ कर दी ना बुआ। अच्छा ठीक है, आप ही कर दो, आती हूँ चाय रखकर। पल्लवी

बुआ अंजलि का मेकअप करते करते उससे सवाल भी करती जा रही थी, किसी लड़के से तो मिलने नहीं जा रही हो ना? नहीं। देखो अगर जा भी रही हो तो ध्यान रखना। नहीं जा रही। शाम से पहले घर आ जाना और देर हो तो मुझे बुला लेना। बुआ मैं आ जाऊंगी। पल्लवी बुआ ने अंजलि को अच्छे से तैयार कर दिया और जब अंजलि चिकन का जालीदार काले बूटों वाला सूट क्रीम सफेद दुपट्टे के साथ पहने सामने आई तो उसके खुले लहराते बालों को देख बुआ कह उठी, बाल तो बांध दो बेटा। बुआ मुझे खुले बाल पसंद है। अच्छा बाबा जैसी मर्जी, आराम से जाना। आपको क्यों लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ? पल्लवी बुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगर देती तो यही कहती कि पहली ही बार तो जा रही हो, क्योंकि इसके पहले तो अंजलि कभी इतना तैयार होकर कहीं गई नहीं थी। एक और बुआ अंजलि का ये रूप देखकर खुश थी तो दूसरी ओर अंजलि के घर से निकलने की देर थी कि बुआ को उसकी फिक्र सताने लगी। उन्हें लगा कि एक बार प्रेम से बात कर ले। तभी याद आया कि उनका भी तो प्रेम से मिलने का आज प्लान था, लेकिन ये तो ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान आया तो उन्होंने एक मैसेज डाल दिया और मना कर दिया। घर से बाहर निकली अंजलि को अरविंद दो गली छोड़कर मिल गया। सफेद शर्ट, नीली जींस और स्पोर्ट शूज उसकी पर्सनैलिटी पर नच रहे थे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक ऑटो में बैठते ही दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। पहली बार अरविंद और अंजलि एक साथ कहीं जा रहे थे। ऑटो तो नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्लो ही चल रहा था, लेकिन उस पर सवार दो जवां दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं

थोड़ी देर बाद अंजलि और अरविंद हजरतगंज के कैफे में आमने सामने बैठे हुए थे। टेबल में एक बड़ी प्लेट में पिज्जा के कुछ पीस रखे हुए थे और एक एक पीस उनके हाथों में था। सामने ही अंजलि की फेवरेट स्ट्रॉबेरी शेक के दो गिलास भी रखे हुए हैं। शेक लो, अरविंद ने अंजलि की तरफ गिलास बढ़ाते हुए कहा। अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर शेक अपनी ओर रखा। कुछ बताओ, अरविंद ने बात छेड़ी। क्या बताऊं? कुछ भी, अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। मैं बीकॉम कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से, मेरी बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, मुझे लिखना पसंद है। और इतना कहते कहते अंजलि की नजर अरविंद की उस निगाह पर गई जो उसे ध्यान से देख रही थी। अंजलि ने अपनी शर्म छिपाते हुए आगे कहने की कोशिश की और टेबल पर रखे उसके दोनों हाथों को हल्के हाथों से छूते हुए अरविंद ने कहा, और अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा और मुलायम हाथों को सहलाते हुए अरविंद ने छेड़ जारी रखी। और हर पल अंजलि के चेहरे पर बहार बढ़ रही थी। वो किसी खुशनुमा फूल की तरह खिल रही थी जिसकी खुशबू सारे माहौल को रंगीन कर रही थी। उसने मारे शर्म के हाथ पीछे करने की कोशिश की लेकिन अरविंद ने उन्हें पकड़ा हुआ था। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? अरविंद के ये पूछने पर शर्म से लाल चेहरे को अंजलि ने ना महलाया। इसके बाद उसकी नजरें झुकी ही रही। वो चाहती थी कि अरविंद उसे अच्छे से देख ले लेकिन उसे अरविंद की निगाहों से बेतहाशा शर्म आ रही थी। वापसी में ऑटो में बैठते ही अरविंद ने अंजलि की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्यों? अंजलि हैरानी से अरविंद की ओर देखती है। बस इसलिए कि मैंने तो तुम्हें जी भर कर देखा लेकिन तुम पीछे रह गई। अंजलि ने प्यार से एक हल्की चपत अरविंद के सीने पर लगाई। तो अरविंद कह उठा, हाँ अब कुछ अच्छा लग रहा है। तुम भी ना, कहते हुए अंजलि ने एक बार फिर शर्म से लाल होकर अरविंद के कंधे पे सिर टिका लिया। अंजलि अपने घर की गली में पैदल चलती आ रही थी। घर की बालकनी पर खड़ी पल्लवी बुआ उसका रास्ता देख रही थी। टेंशन में उनके हाथ रेलिंग पर ही चल रहे थे और दूसरे हाथ में मोबाइल के स्क्रीन पर अंजलि की तस्वीर चमक रही थी। अंजलि के जाने के बाद से ही वो कई बार फोन करने का सोचती रही लेकिन किया नहीं था। अंजलि को देखकर उनके चेहरे पर सुकून आया लेकिन अंजलि की नजर उन पर न पड़ जाए ये सोचकर वो बालकनी से हट गई। पल्लवी बुआ ने प्रेम के साथ देर रात वाली फोन कॉल पर भी इस बात का जिक्र छेड़ा। तुम क्यों इतनी टेंशन में हो? प्रेम ने पूछा। टेंशन में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है। अरे बाबा, इस उम्र में अंजलि किसी लड़के से नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? अपने मोहल्ले में पैदल चलते हुए वो फोन पर पल्लवी को समझा रहा था। तुम नहीं समझोगे, पल्लवी हताश होकर कहती है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। मैं खुद औरत हूँ तो ये अच्छी तरह से जानती हूँ। वो जिस तरह से बनठन कर गई थी और जैसा उसका चेहरा खिला है, वो किसी लड़के से ही मिलने गई थी। अच्छा ठीक है, पहली बात तो अपने आप को औरत मत कहा करो। ये तो खूबसूरत हो तुम, वेरी फनी, पल्लवी ने झूठे गुस्से से कहा। अरे सच में, और दूसरी बात, तुम अंजलि को लेकर फिक्र मत करो। बस उसे समझा दो कि अगर रिलेशनशिप में जाए तो एक दूरी बनाकर रखे। ठीक कहते हो, लेकिन पहले श्योर हो जाओ। पल्लवी को प्रेम की बातों से कुछ राहत सी मिली। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। हाँ मेरी पल्लो। कुछ भी, पल्लवी शर्मा कर बोली। अवध की खुशनुमा शाम की खिलती रात में प्रेम और पल्लवी अपनी मोहब्बत की बातों में लग गए।

जुलाई की उमस भरी सुबह मौसम में आने वाले बदलाव का संकेत देने लगी थी। रोशनदान से आती धूप दीवारों पर रंग बिखेर रही थी। कमर तक हल्की चादर ओढ़े अंजलि अपने बिस्तर पर थी और उसके पांव चादर से बाहर। उसकी आंखें एक सुकून भरा ख्वाब देखकर खुश हो रही थी। मेज पर माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही है। माँ की तस्वीर के बगल में रखी अंजलि की डायरी के खुले पन्ने फड़फड़ा रहे थे, जिसमें से एक में लिखा था, किसी को भी नहीं। ये खत मैं किसी को भी नहीं लिख रही, लेकिन लिख रही हूँ। आज अरविंद ने मुझसे पूछा कि मम्मा पापा साथ रहते हैं क्या। मैं क्या कहती, मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है कि सुबह अच्छे भले गए मेरे पापा वापस नहीं आए, उनका शरीर आया। दादी का रो रो कर बुरा हाल था। बुआ तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। दादू मुझे संभाल रहे थे और मम्मा पापा से निपट कर रोए जा रही थी। फिर पापा का वो शरीर भी धुआं होकर भगवान के पास चला गया। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा। पापा नहीं थे, पर दादू दादी बुआ थे और मम्मा तो थी। दादू दादी गांव लौट गए, बुआ मेरे साथ रहने लगी। फिर एक रोज घर में बड़ा झगड़ा हुआ। मम्मा किसी और से शादी करने की बात कर रही थी और फिर उनकी शादी हो गई। मम्मा कुछ बार आई, लेकिन फिर उनका आना बंद हो गया। फोन भी अब नहीं करती। वो भी क्यों आती, जब आती थी

से कैफे में हलचल दिख रही है। युवा लड़के लड़कियां अपने अपने ग्रुप बनाकर मेजों के पास लगी कुर्सियों पर बैठे हैं। इन्हीं में से एक टेबल पर अंजलि अरविंद के साथ बैठी है और साथ में एक और लड़की बैठी है। अंजलि ने गाढ़े नीले रंग का स्लीवलेस टॉप पहना था, सादा सा मेकअप किया हुआ है, बाल खुले और गले में चांदी की चेन थी। वो अच्छी लग रही थी, लेकिन अरविंद की नजर शायद कहीं और ही थी। वो अंजलि के सामने बैठा था, लेकिन उसका ध्यान उसके बगल में बैठी लड़की की ओर था। उसकी काले घने बाल उसकी सुराहीदार गर्दन से होकर उसकी काली कुर्ती पर ठहर गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों का काजल अरविंद को आकर्षित कर रहा था। उसका चौड़ा माथा और अंजलि से थोड़ा लंबा कद भी अरविंद को भा रहा था। लड़की के गाल सुर्खी से भरे थे और होंठों पर गहरी मुस्कान थी। ये शिवानी है। अच्छा, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बताया था ना, अंजलि ने चहक कर कहा। हाँ बताया था, अपने नानू के यहाँ गई थी, कल ही आई है। अंजलि कुछ ज्यादा ही खुश थी। अरविंद की गहराती नजर शिवानी को पहचान गई थी। ये वही लड़की है जिसे उसने बालकनी में अंजलि के साथ देखा था। अंजलि अपनी बातों में लगी थी, लेकिन शिवानी अरविंद की इस नजर का भाव समझ रही थी। शिवानी ने उस समय कुछ कहना ठीक न समझा और मेन्यू देखने लगी। क्या मंगाऊं मैं? कुछ भी अच्छा सा, अंजलि ने अरविंद को देखते हुए कहा। अरविंद इस बात को भांप गया कि शिवानी उसकी नजर का भाव समझ रही है। कुछ ही देर में तीनों कैफे से बाहर निकल आए। बूंदा बांदी रुक गई थी, लेकिन बादल घने थे। अंजलि कुछ और देर रुकना चाहती थी, वो चाहती थी कि कहीं कुछ देर बैठा जाए, लेकिन शिवानी ने आसमान की ओर देखा और फिर अरविंद की ओर देखकर जैसे अपने आप से ही कहा, इससे पहले

ऑनलाइन एक ऑटो बुक किया और तीनों उसमें बैठकर घर की ओर निकल गए। अरविंद को उसके घर के पास गली में उतारा और शिवानी भी अंजलि के साथ उसके घर आ गई। दोनों कमरे में जाकर बैठी कि अंजलि उसे अरविंद के बारे में बताने लगी। शिवानी अंजलि की भावना को समझ भी रही थी, लेकिन अरविंद को लेकर उसके मन में शक आ चुका था। बाहर तेज बारिश होने लगी। कुछ देर में बुआ कमरे में पकौड़ियाँ और चाय देकर अपने काम में लग गई। ये मशीन यहाँ क्यों रखी है? शिवानी ने बात बदलते हुए पूछा। अरे ऐसे ही रखी है। ऐसे क्यों? पर इतनी जगह है घर में, यहाँ क्यों रखना? तू छोड़ ना उसे। ये बता, अरविंद कैसा लगा? मुझे तो ठीक ठीक ही लगा, शिवानी इस बात को खत्म सा करते हुए बोली। बस ठीक? हाँ भाई ठीक बस। अरे यार, तेरा आशिक है, तुझे पसंद है ना? इतना काफी नहीं है क्या? हाँ ये तो है, तू पहली बार मिली है ना, इसलिए ऐसा कह रही है। एक दो बार मिलेगी तो समझ आएगा। दोनों चाय का कप लेकर बालकनी में खड़े होकर बारिश देखने लगे। अंजलि उस पेड़ की ओर देखने लगी जहाँ वो पहली बार अरविंद से मिलने गई थी। शिवानी बादलों की घड़घड़ाहट को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इस बात को दो दिन बीत गए। घर की बालकनी पर खड़ी अंजलि की नजरें गली की ओर ही टिकी थी।

उस मुलाकात के बाद से अरविंद नजर ही नहीं आया। उसने अंजलि से फोन पर भी ज्यादा बात नहीं की। जब सुबह अंजलि ने फोन किया तो अरविंद ने आज सुबह दुकान से वापसी में उससे मिलने की बात कही थी। अब अंजलि का मन हो रहा था कि किसी तरह समय जल्दी चलता हुआ उसी समय में पहुंच जाए। हल्के बादल थे लेकिन आज बारिश नहीं हुई थी। उमस ने मौसम में कसावट पैदा कर दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने को है। हवा का तेज झोंका पेड़ की एक डाल से सूखे पत्ते बालकनी में फेंक रहा था। हवा से अंजलि के बाल उड़ने लगे और उसे सामने से अरविंद नजर आने लगा। दूर दिन से परेशान अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अंजलि अरविंद से मिलने नीचे आई तो दूर से ही धुंधलाती फिजा में भी उसे अरविंद के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो पहले की तरह खुश नहीं है, परेशान है। और ये सोचकर वो भी परेशान हो गई। अरविंद ने दूर से अंजलि को देखा और फिर पेड़ के पास रुक गया। अंजलि उससे कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या पूछना है और कैसे। फिर उसने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ। परेशान हो क्या? हाँ थोड़ा परेशान हूँ। बताओ मुझे, मैं दूर करूंगी तुम्हारी परेशानी, अंजलि ने आशा भरे शब्दों में कहा। नहीं, अपने आप दूर हो जाएगी। अरे हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बस कुछ समय में ठीक हो जाएगा सब। इसके बाद अंजलि बहुत कुछ कहना चाहते हुए भी कुछ ना कह सकी। अरविंद जाने लगा तो एक बार अंजलि का जी चाहा कि उसे रोक ले, लेकिन इसका भी क्या फायदा होता, यही सोचकर खुद को ही रोक लिया। अरविंद चला गया, अंजलि उसे दूर तक जाते हुए देखती रही। दोनों के बीच कुछ बदल चुका था। फोन पर अरविंद बात नहीं कर पाने का कोई न कोई बहाना बताता। अंजलि को भी एहसास होने लगा था कि या तो अरविंद को कोई बड़ी परेशानी है या फिर वो उसे दूर जा रहा है। यूनिवर्सिटी की छुट्टियां खत्म हो गई थी। अंजलि दिन में यूनिवर्सिटी जाती लेकिन उसका सारा ध्यान अरविंद की ओर लगा रहता। यूनिवर्सिटी से आकर वो बालकनी पर ही खड़ी रहती। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया था, ना तो अरविंद ही उसे रास्ते पर नजर आया और ना ही उसकी आवाज ही फोन पर सुन सकी थी। लेकिन व्हाट्सएप पर वो छोटे छोटे रिप्लाई किया करता था। एक दो बार अंजलि ने अरविंद के भाई की दुकान पर जाकर उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वहाँ उसने बिजी होने की बात कह दी। अंजलि को अरविंद का ये व्यवहार समझ ही नहीं आ रहा था। कहाँ तो वो प्यार भरे सपने सजा रही थी और कहाँ अरविंद उसकी खुली आंखों से ही दूर होता नजर आ रहा था।

0: मोबाइल किनिंग हुई कि अंजलि ने अरविंद का कॉल समझकर लपक कर फोन पकड़ा, लेकिन फोन स्क्रीन पर अरविंद की जगह शिवानी का नाम देखकर उसने बेरुखी से फोन उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। हाँ हेलो, उधर से अंजलि ने रुखा सा जवाब दिया। क्या हुआ तुझे?
1: मुझे क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ।
0: फिर दो दिन से यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, शिवानी ने धमकाया।
1: नहीं आई बस।
0: अच्छा सुन, मुझे कुछ बताना था तुझे।
1: क्या?
0: मिलकर बताती हूँ।
1: अरे बताना।
0: नहीं, आज शाम को तेरे घर आती हूँ, शिवानी ने गंभीर होते हुए कहा।
1: पर क्या बात है, कुछ हिंट तो दे, अंजलि झुंझला उठी।
0: अरविंद के बारे में?
1: अरविंद?
0: हाँ,
1: क्या हुआ अरविंद को?
0: कुछ नहीं हुआ उस नीच को, शिवानी चिढ़कर बोली।
1: अरे कैसी बात कर रही है अरविंद के बारे में,
0: आकर बताती हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ भी।
1: मैं आऊँ यूनिवर्सिटी?
0: नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आती हूँ आज शाम को, कहकर शिवानी ने फोन रख दिया। फोन बंद होने के बाद से ही अंजलि उस बात को लेकर बेचैन थी जिसका जिक्र शिवानी करने वाली थी। अंजलि बालकनी पे खड़े अंदाजा लगा रही थी कि उसकी नजर पेड़ के पास खड़े अरविंद पर पड़ी और अंजलि का मोबाइल बजने लगा। देखा तो अरविंद का ही फोन था। घने बादलों से अंधेरा चारों ओर फैल गया था, हवाएं तेज रफ्तार में चल रही थी। फूलदार लॉन्ग स्कर्ट और सफेद शर्ट पहने अंजलि तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो गेट खोलकर दौड़ती हुई दूसरे पार पहुंच गई। अरविंद पेड़ के नीचे था लेकिन भीग रहा था। इससे पहले कि अंजलि कुछ कहे, अरविंद बोल पड़ा, तुम मेरा इंतजार मत किया करो।
1: अरे
0: तुम फोन भी? लेकिन अंजलि कुछ और कहती उसके पहले ही अरविंद उसकी बात बीच में टोकते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता।
1: ये क्या कह रहे हो और क्यों?
0: जोर से बादल गरजा और बारिश की बूंदें मोटी हो गई।
1: क्योंकि यही सच है,
0: अंजलि अरविंद को आस भरी नजरों से देखने लगी। तभी अरविंद ने कहा, मैं शिवानी से प्यार करता हूँ। उसके इस वाक्य ने अंजलि की आस को पूरी तरह तोड़ दिया। इसके बाद अरविंद ने क्या कहा उसने कुछ भी नहीं सुना। उसने कठोर नजर से अरविंद की ओर देखा और फिर अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई। अरविंद जाने लगा लेकिन अंजलि ने उसे एक बार भी नहीं देखा। वो अपने दरवाजे के सामने जैसे बेसुध खड़ी हुई थी। कुछ देर में वो घर के अंदर चली गई। शाम होते होते बारिश हल्की हो गई। पल्लवी बुआ अपनी स्कूटी गेट के अंदर ही कर रही थी कि शिवानी छाता लिए ऑटो से उतरती दिखी। दोनों साथ ही ऊपर जाने लगे। अचानक फिर से तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। पानी की बौछारें बालकनी तक आने लगी। अंजलि के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा से उड़ते उड़ते एक पन्ने पर आकर रुक जाते हैं जिस पर लिखा है, बुआ मुझे मालूम है मम्मा अब नहीं आएंगी। तुम्हें भले लगता हो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ लेकिन नहीं, मुझे उनका इंतजार नहीं है। हाँ मैं उन्हें प्यार करती हूँ और तुम्हें भी, लेकिन तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं करती। इतना जरूर करती हूँ कि जो साड़ी तैयार कर रही थी वो मम्मा के लिए नहीं तुम्हारे लिए है। अलमारी में रखी है साड़ी, तुम्हें दी नहीं क्योंकि समझ नहीं आया कि कैसे दूं। बुआ तुम प्यारी लगोगी उस साड़ी में और वो जिन्हें तुम चाहती हो वो भी तुम्हें साड़ी में देखकर खुश होंगे। मैंने एक रोज तुम्हें उनके साथ देखा था और मुझे यकीन हो गया था कि तुम प्यार में हो। कितना अच्छा है ना? पता है मेरी मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। इस बात का कोई सबूत मेरे पास नहीं है लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही सच है। तुम भी मेरी माँ के लिए दिल में कड़वाहट मत रखो, मुझे दुख होता है जब तुम उनको कुछ कहती हो। अंजलि। डायरी का पन्ना हवा से एक और बार पलटता है और आखिरी पन्ने पर आकर रुक जाता है जिसमें लिखा है, मम्मा मैंने तुमसे हमेशा बहुत प्यार किया, तुम्हारा बहुत इंतजार किया लेकिन वो इंतजार बहुत साल पहले खत्म हो गया था। मुझे एहसास हो गया था कि तुम अब शायद ही कभी आओ, लेकिन लगता था कि कभी तो तुम मुझे फोन करी।

0: योगी, पर वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक आस जिसकी वजह से मैं यहाँ थी, अब वो भी नहीं रही। मेरी वजह से बुआ अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं नहीं चाहती कि हमेशा ऐसा रहे, इसलिए अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आप आना तो ये नहीं सोचना कि मैंने आपका इंतजार नहीं किया, पर अब और नहीं। अंजलि, तेज हवा से डायरी के सारे पन्ने उलट पलट होते हैं और डायरी बंद हो जाती है।
1: तेरी दुनिया से।

0: भरी कहानी। इस श्रृंखला में आप सुन रहे थे अरकवान दब्बही की लिखी कहानी अंजलि, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, संपादन सहयोग काजल भदरगे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ होंगे हाजिर, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: मुंबई केंद्र से किया जा रहा था FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम हेलो हिसार।
2: आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।
3: हेलो हिसार,
4: हेलो हिसार, हिसार।

दोस्तों, बाहर का मौसम खूबसूरत हो, हाथ में चाय की प्याली हो और फिर हो हेलो हिसार का कार्यक्रम, जिसमें चलते हों आपके मनपसंद तराने।

0: आपकी और हमारी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातों के साथ, तो क्या ही बात है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हेलो हिसार आपके साथ। जी हेलो हिसार में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ।
0: जी अनूप कुमार जी,
1: मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर
0: जी,
1: डिस्ट्रिक्ट क्षेत्रीय भूमि असम से तालुका से है ना।
0: जी अनूप जी, कैसे हैं आप?
1: मसला बहुत अच्छा हो, बढ़िया हो, और फोन मिल गया मतलब आखिरकार एकदम दिल सुकून से भर गया।
0: जी आपका भी सुकून से भर गया और हमारा भी, आप सब श्रोताओं से मुखातिब होकर सुकून से भर जाते हैं हम। बताइए आज कौन सा गीत है जो सुनना है?
1: दो लाइन बोलूं मैम?
0: जी बताइए।
1: साथ होकर दोगे मुस्कुराएंगे जरूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे। राह में कितने ही कांटे क्यों ना हो, आवाज अगर दिल से दोगे तो आएंगे। रितु रितु कौशिक जी है?
0: जी मैं बिल्कुल रितु कौशिक बोल रही हूँ, पहचान लिया आपने?
1: जी रितु जी, बहुत दिन के बाद आपका आवाज मेरे कानों में गूंज रहे है। और आज एक गाना सुना दीजिए, इनका नाम है फरार।
0: फरार
1: है फरार, और गाने का बोल ऐसे है, मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन, बोना वो तो ऐसे करके गाने हैं। और ऋतु जी कुछ दर्शकों में याद करता हूँ।
0: जी जरूर कर सकते हैं
1: जी। पहले है हमारे दिलदार भाई, और उसका नाम है विजय सिंह लक्षरा जी, और अमर सिंह साहू जी, प्रेमजीत चक्रवर्ती जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी, और सतीश भाई अनवर बिहारी।

0: हेलो सर,
1: कौन बोल रहे हैं?
0: जी नमस्कार, जी
1: नमस्कार
0: जी। देवेंद्र कुमार, गांव निगाना कला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बोल रहा हूँ।
1: कैसे हैं देवेंद्र जी, क्या करते हैं गांव में?
0: जी गांव मैनेजमेंट रोहतक का, तो मार्केटिंग ऑटो मैकेनिक का काम करता हूँ जी।
1: अच्छा अच्छा, तो प्रोग्राम कब से सुन रहे हैं आप?
0: काफी सालों से, जब से अपना स्टेशन शुरू हुआ तब से सुनता आ रहा हूँ पहले से।
1: अच्छा, तो कैसे लगते हैं प्रोग्राम, और कौन सा प्रोग्राम है जो बहुत ज्यादा सुनते हैं?
0: अपन जो हरियाणी राजनी आती है, ये अच्छा लगता है जी, और ये फिल्मी गानों वाला भी अच्छा लगता है जी, खेती किसानी का ये भी अच्छा लगता है जी।
1: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत भेज दें आपके लिए हेलो हिसार में?
0: ये आशिक लाकर महमूद, अरुण ईरानी की फिल्म आ गया, किशोर कुमारा था भोसले की आवाज में, जवाब फिल्म का गीत सुना देना जी। आजा मेरी जान, ये है जून का महीना, गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना।
1: क्या बात है, मौसम पे और महीने पे गाना सुनना है आपको। ठीक है देवेंद्र जी, भेज रहे हैं आपकी पसंद पर।
0: धन्यवाद जी।

0: जी स्वागत है हेलो हिसार में, नाम बता दीजिए।
1: हेलो हिसार, हेलो हिसार से बोल रहे हैं क्या?
0: जी बिल्कुल बोल रहे हैं हेलो हिसार से।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: मेरा नाम जी दिलबाग है, गांव डाया।
0: दिलबाग जी, इतना शोर क्यों है आपके आसपास?
1: पास जी अपने बस स्टैंड पे दुकान है, तो साधन आते जाते रहते हैं, उससे शोर हो जाता है।
0: अच्छा, सड़क पे दुकान है आपकी।
1: हाँ हाँ।
0: तो दिलबाग जी और क्या चल रहा है बताइए, कुछ खास?
1: बस जी आपके बाद फोन मिला है तो शुरू में लग गया। तो
0: अच्छा, आप खुश हैं फिर फोन मिलने से?
1: हाँ, बहुत खुश आज।
0: चलिए खुश होने चाहिए,
1: बहुत खुशी हो रही है। कौन, रितु कौशिक जी बोल रहे हो क्या?
0: जी बिल्कुल, रितु कौशिक बोल रही हूँ। और जाहिर सी बात है कि प्रोग्राम अच्छे से सुनते हैं आप, तभी आप आवाज पहचान जाते हैं हमारी, है ना?
1: हाँ, प्रोग्राम सुनते हैं।
0: बताइए कौन सा गीत है आज जो सुनना चाहेंगे हेलो हिसार में?
1: जी बाजी फिल्म का है, मेरे साथी जीवन साथी।
0: जी ठीक है दिलबाग जी, भेज रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ जी।
0: जी जरूर, स्वागत है।
1: सतवीर जांगड़ा है, सिलू मिस्त्री।
0: बस दो ही दोस्त हैं?
1: हाँ।
0: इतने कम दोस्त क्यों बनाए आपने?
1: बस वैसे ही दोस्त तो और भी है, लेकिन ये खास है।
0: अच्छा, इन्हें समर्पित करना चाहते हैं आप ये गीत, है ना? ठीक है, सुनिए अपने दोस्तों के साथ दिलबाग जी ये गीत जो भेज रहे हैं।
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: जी हम हेलो हिसार से बात कर रहे हैं, नाम जान सकते हैं आपका? कैसे
1: राधे श्याम कटारिया, श्री कर्णपुर जिला, श्री गंगा में राजस्थान से बोल रहे हैं मैडम।
0: हैं राधे श्याम जी?
1: बढ़िया मैडम, कुछ
0: और बताइए क्या करते हैं वहां पे?
1: नहीं मैडम, रिटायरमेंट हुए हैं, खाली रहते घर पे।
0: अच्छा, खाली रहते हैं तो खाली समय का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं आजकल?
1: घर में मैडम का हाथ बटा लेते हैं,
0: अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या क्या काम कर लेते हैं?
1: सारे घर के कर लेते हैं मैडम, साफ सफाई कर लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं।
0: तो वो तो बहुत खुश रहती होंगी आपसे, है
1: हाँ जी, उनकी
0: ना?
1: भी छुट्टियां चल रही हैं।
0: अच्छा, चलिए ये अच्छी बात है। आपसी सहयोग से तो परिवार खुशहाल हो जाता है।
1: हाँ जी मैडम,
0: बताइए राधे श्याम जी, गीत कौन सा सुनेंगे आज?
1: आज सुनना चाहते हैं मैडम, आधा दिन आधी रात का गीत है,
0: कौन सा?
1: मैं लंदन छोड़ के आ गया।

फैशन देखे से ऐसे कैसे कैसे, अरे बालों का कट भी एक जैसा और कपड़े भी एक जैसे, अरे लड़का है या लड़की है कोई पहचाने कैसे। अरे पगड़ी बांध के मैं गया था के पगड़ी बांध के मैं गया था चुनरी

सबका है दस्तूर के इसको पकड़ा उसको छोड़ा। लंदन की एक मैडम ने जब मेरे दिल को तोड़ा, मेरे प्यार से टूटे दिल के।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ जी,
0: जी,
1: नमस्ते। जी,
0: नमस्ते। हम हेलो हिसार से बात कर रहे हैं, नाम बताइए।
1: हम योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: कैसे हैं योगेश आप? काफी दिन बाद बात
1: बस
0: हुई आपसे।
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: और बताइए क्या चल रहा है? रेडियो सुन रहे हैं लगातार?
1: हाँ जी, रेडियो तो जीवन का अहम हिस्सा हो गया है।
0: जी बिल्कुल। और आप जैसे श्रोता जब ये कहते हैं कि रेडियो जीवन का हिस्सा है तो हमें बहुत खुशी होती है कि हम आप लोगों से इतनी दूर होकर भी जुड़े हुए हैं, है ना?
1: अभी आकाशवाणी में अपने 90 वर्ष भी पूरे किए, तो इसके लिए भी

0: शुभकामनाएं देते हैं, पूरी आकाश हमारी पूरी।
1: जी जी तो योगेश जी करते क्या है आप?
0: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है। हाँ
1: अच्छा, तो अभी
0: जी,
1: फुर्सत है खेती बाड़ी से?
0: अभी गर्मी में 2-3 महीने फुर्सत भी रहते हैं और इस देश में गर्मी में आराम करना भी हो जाता है। जी,
1: और उधर कैसा है मौसम?
0: अभी भी बहुत गर्मी, उमस है, मानसून और बारिश का इंतजार है।
1: जी, जरूर ये इंतजार भी खत्म होगा आपका। फिलहाल बता दीजिए कौन सा गीत आज भेज दें आपके लिए।
0: फिल्म है दिल तो पागल है और गीत के बोल है कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना।
1: जी, बहुत खूबसूरत गीत के लिए फरमाइश की आपने योगेश जी। सुनिए
0: बहुत
1: आपकी पसंद का गीत और ऐसे ही कॉल करते रहिएगा हमें।
0: बहुत शुक्रिया जी, वादा रहा है हमेशा जुड़ते रहेंगे।
1: जी जरूर।

0: आदरणीय दीदी सादर नमस्कार।
1: सादर नमस्कार, आपको भी नाम बताइए।
0: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: क्या जोश है आपकी आवाज में, जब भी बोलते हैं तो खुश हो जाते हैं हम। बिल्कुल,
0: जी धन्यवाद दीदी, आप
1: कैसे हैं
0: सब लोगों
1: शारदा?
0: का प्यार है, स्नेह है, और हमें ऐसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है।
1: जी कैसे हैं शारदा जी, आप बता दीजिए और क्या चल रहा है?
0: मैं दीदी बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद, बांके बिहारी कृपा से घर परिवार में सब लोग आनंद पूर्वक रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं। कल रात को झमाझम बारिश हुई थी, आधी जैसी हवा तेज चली थी और रिम झिम बारिश भी हुई थी। मौसम आज बहुत ही खूबसूरत सुहाना है।
1: क्या बात है अनवरत, बिल्कुल व्याख्या कर देते हैं आप 2 मिनट के लिए भी अटकते नहीं है कहीं पे, है ना? ये बड़ी अच्छी बात है, आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। बताइए,
0: जी,
1: और
0: हमें भी बहुत
1: आजकल?
0: सुखद अनुभूत होती है जब भी आपसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होता है। बेहद खुशी और प्रसन्नता होती है, हृदय पर खुली तो गदगद हो जाता है कि हमारा भी कौन हेलो हिसार में शामिल हो गया है। धन्यवाद
1: एक बात और कहूंगी आपको, हिंदी बहुत अच्छी है आपकी।
0: दीदी, मैं तो हिंदी भाषी हूँ तो हिंदी तो अच्छी होनी ही चाहिए। जी
1: जी, कामकाज बढ़िया चल रहा है आपका?
0: दीदी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद है।
1: बताइए कौन सा गीत भेज दें आज?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे नित्रे, ओ मेरे नित्वा। रफी और लता जी ने गीत गाया है।
1: क्या बात है, खूबसूरत गीत की फरमाइश खूबसूरत आवाज में भेज रहे हैं शारदा जी आपको, आप सुनिए। और फोन
0: जी
1: किया
0: हृदय से
1: उसके लिए
0: धन्यवाद, आपका दिन
1: आपका
0: मंगलमय हो, नमस्कार।
1: आपका भी धन्यवाद फोन के लिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो हिसार से बात कर रहे हैं, आप कौन?
1: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी,
0: राकेश जी, शिमला से बात कर रहे हैं आप, क्या करते हैं वहां पे?
1: हम तो बागवानी करते हैं। हमारे जो है सेब की जो है बाग बगीचे होते हैं, उसकी हम देख रेख करते हैं।
0: अच्छा,
1: जी, जो हमारे जो सेब होते हैं पूरे भारतवर्ष से आप तक भी पहुंचते होंगे। जी
0: अरे वाह, तो वहां का
1: जी
0: मौसम तो खुशगवार होगा इस टाइम।
1: जी जी उस वक्त खुशगवार वहाँ का मौसम है, और कल बारिश हुई थी और अभी भी आज बादल छाए हैं। तो अब मौसम बिल्कुल, अब ठंडी ठंडी हवा भी थोड़ी चल रही है और गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन गर्मी तो हमारे इधर इतनी होती नहीं है, लेकिन
0: जी
1: थोड़ा ये है कि जो हमारे जो पर्यटक है जो काफी आ रहे हैं इस मौसम में।
0: जी जी बिल्कुल। तो राकेश
1: जी
0: जी, बागवानी करते करते रेडियो भी सुनते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो भी सुनते हैं, सभी प्रोग्राम हम सुनते हैं और आनंद जय आकाशवाणी केंद्रों का।
0: जी बता दीजिए, कौन सी पसंद है आज आपके हेलो हिसार में?
1: हेलो इशार में मुझे एक गाना सुनना है, फिल्म का नाम है दुश्मन, और गाने के बोल हैं आवाज दो हमको हम खो गए। जी
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल, राकेश जी भेज रहे हैं आपकी पसंद आप तक। ऐसे ही सुनते रहिए और जुड़े रहिएगा हमसे ऐसे ही।
1: जी जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हेलो इसार में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्ते जी, मैं गांव मताणी से महावीर बोल रहा हूँ।
0: महावीर जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ दीदी, खेत के
0: आपके
1: अंदर बैठा हुआ हूँ, ठंडी
0: हाँ,
1: ठंडी हवा ले रहा
0: हम
1: हूँ।
0: समझ गए थे क्योंकि हवा चल रही है ना, तो फोन में आवाज आ रही है उसकी।
1: वो मुकेश जी का ना, नहीं पवन करे शोर, हवा तो
0: हाँ
1: खूब तेजी से हवा चल रही है, बहुत
0: जी। तो
1: ठंडी
0: महावीर
1: ठंडी
0: जी,
1: हवा।
0: मौसम अच्छा हो गया है तो अच्छा लगता है, फिर गर्मी में अचानक
1: मेरी
0: ठंडी
1: आवाज
0: हवा आ
1: शायद
0: जाए।
1: रितु जी से बात हो रही है ना? रितु दीदी है?
0: जी, मैं ऋतु कौशिक बोल रही हूँ। तो
1: ओहो,
0: महावीर जी
1: आज तो
0: को
1: शायद बारिश बारिश भी हो जाए, काफी दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है।
0: जी। तो इस ठंडी ठंडी हवा में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? जी
1: दिल ढूंढता है जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझसे मिल सके ना सुबह के उजालों
0: कौन सी फिल्म है, याद है आपको?
1: में। फिल्म का नाम तो याद नहीं।
0: चलिए, कोशिश करेंगे हम, जरूर आपकी पसंद आप तक पहुंचाएंगे। आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे।
1: थैंक यू दीदी।

0: आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे पवन कुमार, तकनीकी सहयोग रहा अमर सिंह सिहाग का। ऐसे ही आपके मनपसंद तराने लेकर हम आते रहेंगे आपके लिए। आप सुनते रहिए आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम।
1: हेलो हिसार,
2: हेलो हिसार,
3: हिसार।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अभी आपने सुना एक फिल्मी गीत और इससे पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक

0: कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी समाचार। इन समाचारों का रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको बता दें हमारे केंद्र से आज शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत सबसे पहले आज के कार्यक्रम 6:20 पर होगा प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत। कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 6:30 पर। 7:00 आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेती किसाना सेती।

7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। कार्यक्रम हमारे गांव का समय रहेगा 7:45 पर, और रात्रि 8 बजे आप लुत्फ उठाइएगा पंजाबी गीतों का।

रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म के गीत और हमारी आज की फिल्म रहेगी बाजीगर। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये समाचार रिले किए जाएंगे और आज रात 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। रात 10 बजे सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे और हमारा ये आज का कार्यक्रम होगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित। श्रोता अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792-53-272। रात्रि 11 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। आइए अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे हरियाणवी गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40 पर और प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते हिसार।

कल साय 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। ये कार्यक्रम व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित होगा और कार्यक्रम युवा उमंग का समय रहेगा कल साय 6:30 पर। साय 7 बजे कार्यक्रम किसानवाणी और महरे गांव का समय रहेगा साय 7:30 पर। कल रात्रि 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम परिक्रमा और कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आज प्रसारित किए गए कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा FM 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल सेवा व सुशासन का स्वर्णिम अध्याय रहा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने श्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों का कार्यकाल बताया। कहा, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नई गति मिली। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। यह मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार नियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल सेवा व सुशासन का स्वर्णिम अध्याय रहा है। इन 12 वर्षों में भारत तेजी से बदला है। वे आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड समय तक भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया में नई पहचान दिलाई है। गगनयान की ओर बढ़ते कदम, चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता, अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। पिछले 12 वर्षों में भारत में संभावनाओं के देश से उपलब्धियों के देश तक की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में तुष्टिकरण की राजनीति को पीछे छोड़कर संतुष्टिकरण और अंत्योदय के एक नए युग में प्रवेश किया है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से हर योजना को अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सफल और

0: ईमानदार प्रयास किए गए हैं।
1: 12 वर्ष के कार्यकाल में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, मोदी जी ने मूल मंत्र दिया है। ये भारत के विकास का राष्ट्रीय दर्शन है। 12 वर्ष आदरणीय मोदी जी ने ज्ञान के उदय की बात कही है। विकसित भारत में हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना होगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 12 वर्षों में जो 4 स्तंभ है, इनको प्रकृति की मजबूती से काम हुआ है और विकसित भारत का ये मुख्य आधार भी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब हम गरीब को मजबूत करेंगे, हम युवा को पैरों पे खड़ा करेंगे, किसान को सशक्त करेंगे और नारी को साथियों उसका सशक्तिकरण करेंगे तो विकसित भारत एक गति से बनेगा।
0: उन्होंने कहा कि ये सत्ता को विशेष अधिकार का माध्यम नहीं बल्कि सेवा का संकल्प बनाने की यात्रा है। गरीब कल्याण मोदी सरकार की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु है, इसीलिए वर्ष 2014 के बाद देश में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इस अवसर पर 12 वर्ष की उपलब्धियों से जुड़ी एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों का कार्यकाल रहा है। इस दौरान देश का अभूतपूर्व विकास देखने को मिला। आज फरीदाबाद में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 10 जून को श्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त कर चुके हैं और मोदी सरकार के 12 वर्ष राष्ट्र निर्माण, पारदर्शिता, जवाबदेही और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आधारित रहे हैं।
2: आदरणीय मोदी जी देश के सबसे लंबे 12 साल
3: तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने।
2: 12 साल देश के विकास के साल के रूप में जाने जाते, क्योंकि पहले दिन से ही मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर काम किया है। इसलिए आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत की GDP 7.7% है। किसी भी दुनिया के देश की ये GDP नहीं है और पिछली तिमाही तो 8.4% की रही। मतलब हर तरह से, हर क्षेत्र में देश आगे बढ़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ हो, कृषि हो, एजुकेशन हो, कोई भी क्षेत्र हो, स्टार्टअप हो।
0: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश का बुनियादी ढांचा निर्माण बजट वर्ष 2014 के लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है, जबकि रक्षा बजट भी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में कमी आई है तथा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद विकास को नई गति मिली है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और रक्षा निर्यात के लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का भी उल्लेख किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब में समाज कल्याण व अधिकारों की रक्षा के लिए नीतिगत या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वे आज पंजाब के राजपुरा में सैनी समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित सैनी महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने राजपुरा की धरती के वीरों की पावन और ऐतिहासिक धरा बताते हुए कहा कि ये क्षेत्र दोनों राज्यों के भाईचारे का प्रतीक है।
4: इलाका पंजाब से हरियाणा नु जोड़न वाला ये सिर्फ एक पुल नहीं है, सगों दोहां सूबियां दे ये प्यार सार से भाईचारे दा ये प्रतीक है। इस मिट्टी ने मेहनती किसान पैदा करने दा काम किया है। इस मिट्टी ने बहादुर जलान देने दा काम किया है। समाज की सेवा करने लई उम्र लाने वाले सेवक इस भूमि ने दिते ने। मैं इस महान धरती नु
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, नई नीतियां बनाई और लागू की हैं, जिनसे गरीब व्यक्ति को विकास की धारा में लाने का काम किया है। पंजाब में हरियाणा के तट पर जन कल्याणकारी नीतियां लागू की जाएंगी। पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अनेक वादे करके पंजाब के लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने का कार्य किया। आज जनता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही है। श्री नायब सिंह सैनी ने समाज एवं राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि इस प्रयास से पंजाब को

भी समृद्ध एवं खुशहाल बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि समाज के हकों की रक्षा के लिए जोरदार पैरवी की जाएगी. हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक

0: पत्रकार जगदीश सिंह झिंडा ने जानकारी दी। गौरतलब है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी गुरु पर्व पर हरियाणा से एक जत्था पाकिस्तान में धार्मिक यात्रा के लिए 9 जून को कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी से भेजा गया था, परंतु किसी कारण से 10 जून को इस जत्थे को वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करने दिया गया। डाक विभाग द्वारा माला मंडल के किसी भी गांव या वार्ड की मांग पर आधार अपडेट के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। डाक विभाग के प्रवर अधीक्षक विजय कुमार ने आज अम्बाला में ये घोषणा की।
1: अपने डाकघरों में हमने आधार के लिए, नामांकन के लिए, आधार अपडेशन के लिए, आधार में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए, आधार में फोन नंबर अपडेट के लिए अलग अलग जगह पे काउंटर लगाए हैं। किसी गांव में या किसी वार्ड में अगर 50 या 50 से ज्यादा लोग आधार के लिए तैयार हैं या फिर वो आधार का अपडेशन कराना चाहते हैं तो उनके सरपंच या कोई जनप्रतिनिधि हमसे संपर्क कर सकता है, तो उसको हम उनके एरिया में भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जा रहे थे। FM 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:20 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत FM 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ इंग्लिश। स्वागत करती हूँ आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
0: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राजेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जसल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणी जी।
0: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
0: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
0: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
0: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का यह हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
0: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है। ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
0: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है। खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
2: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं, जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है, जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
2: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं, जैसे
2: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
2: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
2: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
2: हिंदी की पाठ्यपुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है। और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
3: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
3: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
3: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
3: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
3: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
3: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
3: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
3: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
3: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
3: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
3: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
3: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
3: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
3: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीत में।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन

और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को मंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार। विज्ञापनों के

0: माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग के अंतर्गत प्रायोजित कार्यक्रम NCERT भाग 1305 FM 102.3 MHz पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसाना सेती।

0: सावित्री बहन राम राम।
1: राकेश भाई आपने भी राम राम और कार्यक्रम खेती किसाना खेती सुनने वाले सारे बहन भाई ने राम राम।
0: सावित्री बहन देखो गर्मी का मौसम है और बहुत ज्यादा गर्मी होनी शुरू हो रही।
1: बिल्कुल राकेश भाई देखे तापमान की बात करा तो 43 के आस पास तापमान रहा है पर 43 के आस पास तापमान महसूस ऐसा हुआ है जो को 45 तो ऊपर जा रहे है मतलब तेज गर्मी एकदम तय।
0: और देखने में आवे जिस तरह मान लो आप अंदाजा लगाओ पानी ते
1: हाँ
0: जिस तरह टंकी में यदि हाथ आप लगाऊंगी तो गर्म पानी जो है अपन में महसूस होगा जो सर्दिया में करने के बाद होया करे इस तरह का जो पानी है अपन महसूस होगा।
1: बिल्कुल।
0: और आज हम बातचीत करांगे भाइयों गल है कि भाई गर्मी का मौसम में पशुओं की किस तरह देखभाल करें इस विषय पे।
1: बिल्कुल अर्गेश भाई बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम अपनी देखभाल तो कर लें पशु धन है हमारा अनबोल धन है और अनमोल धन है क्योंकि उसकी कीमत उसने दे रहा है जो बहन भाई उसकी देखभाल करने लाग रहे है भाई किस तरह पशु की देखभाल करी जर की इसकी कीमत है कि देखो एक अब आप पशु की अच्छी तरह देखभाल करके और साल में एक पशु भी अपन बेच जाने तो वारे न्यारे हो जाए हैं तो बेच जद पाओगे जद आप उसकी 24 घंटे सारे मौसमों में बराबर देखभाल कर पाओगे गर्मी तभी बचाना है सर्दी तभी बचाना है मच्छरों तभी बचाना है सारे मौसमों में हम उसकी बहुत प्रॉपर ढंग से देखभाल करेंगे तो ही आप उसका अच्छा मोल ले पाओगे।
0: क्योंकि भाई जिस तरह गर्मी ज्यादा है तो उसमें जो पशु का है हीट स्ट्रेस उसका है जिस तरह तो भूख कम लगेगी दूध का जो उत्पादन है वो भी घटा देगी और जो है बीमारियां वो भी ज्यादा बढ़ जाएंगी।
1: और यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि इतनी गर्मी में देखो आपने भी भूख कम लगा आप पानी ज्यादा पियो तो यही हालत अपने पशुधन की भी है क्योंकि उनमें भी अगर आप सूखा चारा डाल दें जो आप हरा चारा कम डालना तो उन्हें ज्यादा प्यास लगेगी। सबसे पहले तो अपन कैसे भाई बात करनी पड़ेगी कि छाया और ठंडी जगह की व्यवस्था करनी पड़ेगी अपने पशुओं खातर जिस तरह आप छाया की मैं रह गए खुश हो वहां गर्मी का मौसम में इस तरह अपने पशु भी खुश हो गए हैं। पशुओं ने सीधी धूप तो बिल्कुल ही लगनी चाहिए अच्छा हवादार अपना कमरा होना चाहिए बरामदा है या अपने शेड बना रखे है और शेड है तो उसके ऊपर अपने पूड़े वगैरह डाल दे जिससे कि ठंडी रहे गर्म छत ना हो उसकी और हवा का आवागमन प्रॉपर ढंग से होना चाहिए उसमें।

0: और देखो भाई आजकल नई नई तकनीक आ रही है सावित्री बहन, उसमें के कर रहे हैं कि जो छत है नी उस पर टीन ला दे हैं कई भाई। यदि आपने भाई छत पर टीन ला रखी है, देखो पहले के थे के कड़ी चढ़ा करते, लेकिन आजकल वैसे तो बड़े बड़े कमरे बना दे लेकिन ऊपर जो है ना टीन लगा दे। यदि टीन लगाऊंगे तो फिर पशुआ ना ज्यादा गर्मी लगेगी।
1: सही
0: तो
1: बात
0: हाँ,
1: है।
0: ऐसी स्थिति में भाई आप न्यू करेंगे छत पर जो अपना पुआल है, वो जिस तरह धान की पुआड़ है ना वो सारा लगाए दें, एक एक फुट लगाए देंगे तो उस तक के होगा कि भाई गर्मी जो है वो फिर कम होगी।
1: और आजकल केश भाई नई तकनीक में आ रही है कि थर्मल शीट भी लग जाए ऊपर, बरामदा है या जो अपन शेड लगाई हो उसमें हीट कम पास होगी और गर्मी कम होगी उसमें, अगर हम थर्मल शीट का प्रयोग करेंगे तो।
0: तो देखो भाई आप पंखा का तो प्रयोग करें, यदि संभव हो तो आप कूलर का प्रयोग भी कर सकते हैं। और कई बार न्यू है कि कई भाइयों के पास है, विशेषकर जो खेतों में रहने लग रहे हैं, छायादार जो अच्छे पेड़ है नी उनके नीचे भी जो आप बांध सके।
1: देखो पेड़ बिल्कुल गहरे होने चाहिए, उनमें गर्मी पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कर आम का पेड़ हो गया, गहरा नीम का पेड़ हो गया, गहरा जो छतरी वाली बकान हुआ है इस तरह का पेड़ हो गया, या अपने आस पास कोई पीपल का बरगद का पेड़ है, इस तरह गहरी छाया वाला पेड़ हो ना, तो आप बांध देंगे तो अपने पशु आने गर्मी तक बचा सकेंगे।
0: और भाइयों देखो सवेरे सवेरे यदि आप जिस तरह सुबह तालाब पर ले जा सके हैं और शाम की टाइम पर तालाब पर ले जा सके हैं, और जिस तरह मान लो 2 या 2:30 या 3 बजे ना खोलना पशुआ ने, क्योंकि उस टाइम जो है पूरा गर्मी का जोर वो है तो उस टाइम गर्मी लगने की ज्यादा संभावना रहे।
1: और अब तो बहन भाई अन्य कहना चाहूंगी, सुबह 9 बजे तो पहली पहली बार लेके जावे, और शाम ने 5 बजे के बाद अगर आपने जोड़ पर ले जाना है या बाहर चरण खाते ले जाना है या बाहर बांधना है तो सुबह 9 तो पहली और शाम ने 5 बजे के बाद, क्योंकि इतनी गर्मी मर के भाई 5 बजे के बाद भी देखो गर्म ही दिन रहा है, देर चौकी देर तक छिपा है आजकल, तो कोशिश करें कि थोड़ी सी छाया हो या ठंड हो या अपने पशुओं ने बाहर लेकर जावे।
0: और भाइयों इसके बाद बात आवा कि पानी की व्यवस्था सही होनी चाहिए, क्योंकि यदि हम आजकल सावित्री बहन टंकी में पानी रखेंगे तो उसमें जो टंकी नीचे बनाई हो रही है वो तो ठीक है, उसमें तो पानी नॉर्मल आपने मिलेगा, लेकिन जिन भाइयों के पास जो रबड़ की, क्योंकि टंकियां 1,000 लीटर की 2,000 लीटर की, उनमें तो यदि पानी पियाओगे वो तो आपने गर्म पानी मिलेगा। आज के समय में तो आपका ये है भाई उसका अच्छा ठंडा पानी मिला दे, एक नॉर्मल पानी हो जाए तो उसी टाइम जो अपना पशुओं ने पियावे, क्योंकि यदि आप वो पानी पियाओगे जिस तरह मैंने गर्म होगा और वो पानी पिला दोगे तो जो पशु दूध दे नहीं वो फिर दूध कम देना शुरू कर देंगे।
1: बिल्कुल सही बात है राकेश भाई, आजकल देखो अगर आपकी बात सही है कि प्लास्टिक की टंकी का बड़ा चलन है छत पर, धर दे आपा और दिन में आपा भी अगर टूंटी पे पानी चला दिखाएंगे तो बहुत गर्म पानी आएगा, तो पशु तो इस पानी में किस तरह पियोगे, आप हाथ भी नहीं दे सकते। तो सारे बहन भाई ने यह कोशिश करनी चाहिए कि पशुओं ने पीने का पानी हमेशा नीचे ही ठंडा रखें, अगर टंकी आपके पास उपलब्ध हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ड्राम या कोई टोकनी बाल्टी घड़ी अपने भर के धरे, जो पशुआना अपने सवेरे पहना जब ताजा पानी आओ जब अपने भर के धर ले, ताकि पानी ठंडा और साफ अपने पशुआ ने पिला सके।
0: और भाई कम से कम 3 बार, संभव हो तो 4 बार आप पानी पिलाओ, नहीं 3 बार तो पानी जरूर पिलाओ, और सवेरे और शाम ने 2 बारी तालाब आप जरूर लेके जाओ।
1: और अगर तालाब पर ना ले जा सके तो कोशिश करें कि एक बारी तो पशु ने जिस तरह 9 बजे से आप बाहर तक लाके भीतर बांध रहे हो या शाम ने बाहर ले जा रहे हो उसके बाद दिन छिपे से, एक बारी तो पशु ने जरूर ही जरूर नुहा दे, इस मौसम में एक बारी पशु के ऊपर पानी जाना या नुहाना बहुत जरूरी है। अगर आप जोड़ में लेकर जा रहे हो या कहीं नदी नाला में नुहा के ले आए तो वो तो बहुत अच्छी बात है।
0: देखो भाई आपका के है जिस तरह आप घर नहाओगे तो उस तक के होगा कि सावित्री बहन जो शरीर का तापमान है वो नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।
1: बिल्कुल
0: और इसके बाद भाई देखो साथ साथ जो खान पान का भी आपने गर्मी के मौसम में खूब ध्यान रखना है, उसके में एक तो भाई आप जो है हरा चारा जरूर दे, क्योंकि इस मौसम में हरा चारा बहुत कम हो है, फिर लेकिन आप कोशिश करें कि हरा चारा उनती मिले। और एक के है कि गर्मी का मौसम है इसके में भूख जो है वो कम लग गए है, तो संतुलित जो खान पान का है वो आप प्रबंध करें जिसमें के मिनरल मिक्सचर भी आप जो है पशुओं ने दे सके हैं।
1: बिल्कुल है। रेगा अचार की अपन बात करें, घास होगी, मक्का हो गया, बरसीम होगी, या अपने दूसरा कोई हरा चारा बोर किया तो उस प्रकार का हरा चारा जरूर दे दें, और आपके पास अगर और अचार उपलब्ध है तो आप आम

0: की बबूल की जामुन की पत्तियां भी आर्य चारा को रूप में पशुओं ने दे सके हैं।
1: और भाइयों जो गुड़ है वो भी इस टाइम में ये कहे हैं भाई थोड़ा थोड़ा वो भी खुआया जा सके,
0: गुड़ और नमक का गोल दिन में अब दो बारी भी थोड़ा थोड़ा
1: दे सके हैं, क्योंकि उससे जो है वो प्यास ज्यादा लगेगी और पशु यदि पानी ज्यादा पीवेगा तो जो दूध देने वाले पशु हैं जो विशेषकर तो वो थोड़ा कम घटाऊंगे फिर दूध।
0: और खाना कोशिश करें कि आप रात में या सुबह शाम ही ज्यादा डालें ताकि अपना पशु अच्छे से ठंड में खा सके चर सके।
1: और इस समय पे सावित्री बहन देखो जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा टीकाकरण भी कराया जाए है, वो जो खुरपका है मुंह पका है, क्योंकि बारिश से पहले ही जो है वो टीके लगाए जाए तो उनकी नियमित रूप से जो है पशुओं की आप संभाल रखें। अगर ये बुखार है या सुस्ती है भूख कम लग गए है दूध कम दे है इस तरह के जो लक्षण दिखाई दें तो आप जो है तुरंत भाई जो पशुओं का डॉक्टर है उससे आप संपर्क कर सकें।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसाना सेती एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम जिसका रिले किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने के लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चले, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले

0: वर्षों में काम हुआ है, और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि ये 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा, तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसमें संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है, और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती है, तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोविनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएं चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलिवेंट है, भारत ने अपने इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके, ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं, और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है, और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण, उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहां अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एम्यूनिटीज को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहां जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिला ऐसा नहीं है। पिछले

वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में जीएसटी का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी

0: काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास इन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया। उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की जीडीपी में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक जब भारत विकसित होगा तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर के कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है। होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है। निवेश विज रोजगार सजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त तो टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा, निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं, हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म की ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहां एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहां से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 50 से ज्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशन

0: नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिये, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क को स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोडमैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोडमैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटाडेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो है वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है, वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को, जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, उस सूर्य पर लटकाने तक का उपक्रम किया गया था, लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है, धरती कितने डिग्री कोण में झुकी हुई है, धरती और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, चंद्रमा का सर्कमफ्रेंस कितना है, और वो धरती का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है।

0: इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या है, उस सबका रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूं कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है, 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे, जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहां जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होता है, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अभी तो भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बार कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंजलि हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोली में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सके, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करे, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए। इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपरा, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है और भारत जिस दिशा जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश विकसित देश बने हैं। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया, जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, तो मेरे पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हो, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों के भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: क्योंकि भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा क्या भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थ यात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत के जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और एक भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध तारा का, तावस में प्रथम फुहारा का और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष

0: विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: अभी आप सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त शाम के 7:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम मारे गांव के अंतर्गत कुछ हरियाणवी लोकगीत।
2: हाय, क्या हुआ?
3: डेड
2: किट हो गया।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए

हरियाणवी लोकगीत एफ एम एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात के 8 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे पंजाबी गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी तक आप सुन रहे थे गुरदास मान के गाए हुए कुछ पंजाबी गीत। आइए अब सुनते हैं कुलदीप मानक को इन पंजाबी गीतों में।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल नमस्कार ये आकाशवाणी है 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है

कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक फिल्म के गीत, और हमारी आज की फिल्म रहेगी बाजीगर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खुला आकाश, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुने बाजीगर फिल्म के कुछ गीत। FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, और इन समाचारों के बाद रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए देश भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री दिमित रवान कोरितोवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफों में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी के इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों, जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ सकलेन अख्तर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टॉप फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news.in

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

प्रस्तुति कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का, यानी इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

थोड़ी सी बेवफाई। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का दो गाना, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के थे। गीत को लिखा था गुलजार साहब ने और धुन बनाई थी खयाम ने। कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में है। ये फिल्म है शर्मिली। गीत रचना नीरज की और संगीत सचिन देव बर्मन।

0: किस्मत हमसे खुद से
1: किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था शर्मिली। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए। मदन मोहन का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत।

हिसार के अंदर एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे अपने रेडियो साथी अनिल भल्ला के साथ। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। ये हमें मैसेज आया है यूपी प्रतापगढ़ से सुरेश कुमार, राजेश कुमार, रविराज, विनीता रानी और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट का मैसेज हमें मिला है। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कोसर का मैसेज हमें मिला है। हमारे श्रोता हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज प्राप्त हुआ है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, बीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम रामा, पालीपुरी, सुनील पाठक और समस्त इनके मित्रगण हमें मैसेज भेज रहे हैं। और मंटू शर्मा, सोनू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, गांव शेरड़ा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है गंजरू डगारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन और शमसुल कमर राही का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगरेजा, पूनम गगरेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का मैसेज हमें मिला है। संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, आशा दीपांजलि, दीक्षा बाघमारे और शशांक बाघमारे का मैसेज हमें मिला है। बाजार रोड मुंगेसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी का मैसेज हमें मिला है। गांव चौधरीबाद से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियांशी का मैसेज हमें मिला है। और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता रहेंगे महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और पूजा परिहार हमें मैसेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर फिल्म दूध का कर्ज का ये गीत। इसके गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं अनु मलिक। आवाजें रहेंगी अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम तो हर धड़कन में बसे रहते हो। भूलने की लाख कोशिश कर ले हम, फिर भी याद बनकर दिल में रहते हो। ठीक इसी तरह हमारे श्रोता भी हमारे दिल में हमेशा बसे रहते हैं। और रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हमें मैसेज किया है जगमाल सिंह डागला ने। हैप्पी डागला, JS नायक, शोभा नायक और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज प्राप्त हुआ है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजा है, हमारे श्रोता रहेंगे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुरहेकर का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम और अदीप का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, यश, प्रायण, शिवम और प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा का मैसेज हमें मिला है। और हमारे अगले श्रोता हैं जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का मैसेज हमें मिला है। और गांव फरांसी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी हमें मैसेज कर रहे हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दतार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का मैसेज हमें मिला है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मैसेज कर रहे हैं। और ये हमारे श्रोता हैं अग्रोहा से महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा, नरेंद्र हुड्डा, अंकिता हुड्डा, सुन्नू हुड्डा, तानिया हुड्डा और बिल्लू और यश बैनीवाल का मैसेज हमें मिला है। और गांव चूली देशवाली, जिला हिसार से मास्टर ओम प्रकाश गढ़वाल, डड़ोली से रघुवीर मंडेरना, मास्टर विनोद जाखड़, मास्टर इंद्र मोहन शर्मा और रामनिवास पांडु का मैसेज हमें मिला है। और गांव लोहगढ़ ठकरावाला, जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और शुभदीप सिंह का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत। इस गाने को लिखा है SH बिहारी ने, धुन बनाई है ओपी नैयर ने और गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले। निगाहों ने निगाहों से जो पैगाम दे दिया, निगाहों ने निगाहों से जो पैगाम दे दिया, लब खामोश रहे और दिल ने सलाम दे दिया। बिना कुछ कहे वो हाले दिल समझ गए, बिना कुछ कहे वो हाले दिल समझ गए, इशारों इशारों में जाने क्या कह गए। आइए सुनते हैं इशारों से सजे इस प्यारे से खूबसूरत गीत को।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे हमसफर से। आवाजें रहेंगी लता मंगेशकर और मुकेश की, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। पसंद है आप सभी की। हमारे श्रोता रहेंगे जलालाबाद शामली यूपी से, रशीद मंसूरी, अयान मंसूरी, जिशान मंसूरी, और ये हमारे श्रोता हैं गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर और मनोज भ्याण। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजा है गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर और इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे अगले श्रोता रहेंगे रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, और ये हमारे श्रोता हैं। सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी का मैसेज मिला है। और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने, हीरामन शेंडे का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने हमें मैसेज किया है। और इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजा है शिवाजी नगर वर्ली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर इंदिराबाई, और खांडवी बुलढाणा से दीपाली राम धाड़े, स्वराज धाड़े, और थिलोरी दरियापुर से सुनैना पावन भोंडे और तनुज पावन भोंडे का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज प्राप्त हुआ है। ये हमारे श्रोता रहेंगे नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल ने मैसेज किया है। ये हमारे श्रोता हैं सहावर रोड गंजरू डवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी और शमसुल कमर राही का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता रहेंगे गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई शैलेश, प्रतीक्षा स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर मेरे हम सफर फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, जिंदगी की राहों में मिलना और बिछुड़ना तो अक्सर होता ही रहता है, पर कुछ चेहरे, कुछ बातें, कुछ आवाजें ताउम्र हमारे जहन में रहती हैं। वो मुलाकातें ही क्या खूब थी, कुछ पल की ही सही, आज तक दिल में उसकी एक महक बाकी है।

साथियों, हमें अगले गीत के लिए मैसेज आए हैं। गांव नलोई, तहसील सिवानी मंडी, जिला हिसार से हमारे श्रोता हैं सज्जन कुमार जांगड़ा, राजपाला, कार्तिक व वेदांश जांगड़ा, और गांव ठुईया, जिला फतेहाबाद हरियाणा से गगन सोड, दीपक, राकेश और मैना देवी का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजा है सब्जी मंडी बुलडाना से शबीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और हमारे ये श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें अगला मैसेज किया है। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से का मैसेज हमें मिला है। और नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंजरू द्वारा उत्तर प्रदेश से अफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का मैसेज हमें मिला है। गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका और वाणी थांदी का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला और सुमहेद कुमार दामोदर और

आधना पवन पाटिल का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हमारे श्रोता रहेंगे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल का मैसेज हमें मिला है। घरोंडा करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान जी हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता रहेंगे मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर ये गीत। मोहम्मद रफी की आवाज रहेगी, फिल्म रहेगी हीर रांझा, संगीत मदन मोहन का है और इस गीत को लिखा है कैफी आजमी ने।

तेरे यादों का सहारा है तो जिंदा हैं अभी, वरना इस दुनिया में रखा ही क्या है। हर तरफ भीड़ है, मेले हैं, उजाले हैं, मगर तेरे बिन दिल को कहीं चैन नहीं मिलता। जिसे चाह था दिल से वही दूर चला गया। अब ये महफिल भी पराई है, ये जहां भी पराया है। पर ये दोस्तों, ये महफिल सिर्फ इस गीत में पराई है, लेकिन हमारी और आपकी महफिल तो आकाशवाणी के हिसार केंद्र पर आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा, आपके फोन कॉल्स और आपके ईमेल्स के द्वारा सस्ती ही रहती है। मन तो नहीं करता कि आपसे विदा लूं, लेकिन वक्त का तकाजा है, वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। और फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपने रेडियो साथी अनिल भल्ला को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये समाचार रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी के इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन

0: क्या है, एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Magdum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Su Yu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आपने सुने अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:53 पर हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।